0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों का

0: कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल हैं। आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारक और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा कल काशी में संपन्न हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में आयोजित समापन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में काशी और पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए बदलाव देश के सामने हैं। भारत ने अमरीका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपाय करने का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार अर्थव्यवस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उसने रियाद के उत्तर में एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया और यमन की राजधानी सना में उस प्रक्षेपण स्थल को नष्ट कर दिया जिसका इस्तेमाल सऊदी राजधानी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब, अल जदीद और बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलिबल इम्पेंट्रेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि इस वर्ष एक्सरसाइज वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय अभ्यास ड्रोनाथन और जारी ऐतिहासिक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति सहित कई महत्वपूर्ण विधियों के जरिए वायुसेना अपनी युद्धक तैयारी को लगातार परख रही है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मोचोवा का सामना निकोला बार्तुनकोवा से और मीरा एंड्रीवा का मैच एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress or IMC at Yashobhoomi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity, and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment, and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity, and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today, chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman. The meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. The 94th Indian Air Force Day is being celebrated today. The theme for this year's celebration is Indian Air Force Infallible, Impervious and Precise. In his message through Akashwani yesterday, the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, said the Indian Air Force is always ready to protect the nation with alertness and firm commitment. He said, last year, Operation Sindoor reaffirmed the pivotal power of integrated air operations, demonstrating its capability and capacity to defend country's sovereignty. The Seva Sankalp bike yatra from Vadnagar to Kashi, which had started on the occasion of Prime Minister Narendra Modi's birthday on 17 September, successfully concluded yesterday. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath addressed the concluding ceremony of the bike Seva Yatra from Gujarat's Vadnagar to Kashi in the presence of BJP National President Nitin Nabin. Yogi Adityanath highlighted how Kashi changed in past 12 years and UP in last 10 years. Addressing bikers and guests from Vadnagar who had come to Kashi, the Chief Minister congratulated PM Modi on successfully completing 25 years in public life on behalf of the people of the state. He said, this journey from Vadnagar to Kashi is an opportunity to honour PM Modi's 25 years of Seva Sankalp. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Koth Divoa's Vice Prime Minister and Defence Minister Tene Birahima Ouattara in Abidjan last night. In a social media post, Dr. Jaishankar said the two sides discussed their growing defence partnership underpinned by mutual trust, capacity building and shared interests. They also exchanged views on opportunities to further strengthen cooperation in defence and counter-terrorism, including through training, capacity building and enhanced institutional exchanges. The External Affairs Minister also held a comprehensive discussion with Cote d'Ivoire Minister of State for Foreign Affairs and International Cooperation, Niale Kaba. India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address structural excess capacity and production and curb non-market policies that distort global markets. The joint ministerial statement signed by 15 participating economies was released by the Office of the U.S. Trade Representative last night. Tensions in the West Asia escalated after Iran-backed armed group Houthi attacked two airports in Saudi Arabia, killing three people and injuring more than 30 others. In table tennis, Indian paddlers Manoj Shah and Dhiraj Chitali created history by becoming the first Indian mixed doubles pair to reach the semi-finals of WTT Grand Smash after beating Romania's Eduard Ionescu and Burdett Soch 3-0 at the China Smash in Beijing yesterday. The fifth-seed Indian duo won the quarter-final 11-9, 13-11, 11-3 to secure a place in the last four. And that is the end of this news bulletin.
2: Yanavasmani Turan, also my name is Jimmy Chikung. Aha, yes, so my name is Jimmy Chikung. Aha, yes, so my name is Jimmy Chikung. Aha, yes, so my name is Jimmy Chikung.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर

0: लाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल है। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित भी दांत।

0: sevin ve sevcin grupta kalın. Yankari gibi sevin ve servisler gözetici. Download Sevin Sarkı App.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरल में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटरनोडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है। वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
4: कोच्चि
2: भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबुधाबी में कोटी डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेनी बिरहामिया आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबुधाबी में हुई बैठक में डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रहे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हुती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हुती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों दुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
4: मैं इंडस्ट्री का हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वही का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरत तो सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, ऐसी है नहीं। तो पढ़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना, घर में थोड़ी यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ है,
1: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं है। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा। फिर आई 1994 में क्रांति भी, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
5: तुम भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें?
1: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
5: तुम मेरी भाई क्रांति लाना चाहती थी, तुम उनके जोर पर पहले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात? किसे चाहती हो? मैं जान गया कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
1: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मनोज शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनोज और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद सुरगत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक न थकूंगा न रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किस्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वही भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मनोज शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूर संचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूर संचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। सरकार ने सिक्किम में रंगपो और रानीपुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत इस मार्ग को पक्के किनारों वाले 2 लेन के राजमार्गों में उन्नत किया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि उन्नत मार्ग से गंगटोक और सिक्किम के अन्य हिस्सों के लिए अधिक सुरक्षित, तेज और मजबूत संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी। बेहतर राजमार्ग से पर्यटकों, कृषि और बागवानी उत्पादों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवोकी शहर में हुई G20

0: क्षेत्रीय देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष में यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को रूस द्वारा निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे गए हैं। यूक्रेन में कल हुए इस हमले से 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। आज वायुसेना दिवस है। इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में से एक थे। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
1: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं।
0: ये संवाद जो अभी आप सुन रहे थे, ये थे नाना पाटेकर का अग्नि साक्षी में दिया हुआ संवाद। और खेलों में पेचिंग में मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्नैच टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress, IMC, at Yashobhoomi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, the meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar was reportedly found unconscious at his home and was immediately rushed to a nearby hospital. As per preliminary analysis, doctors attempted to revive him for nearly 45 minutes, but he did not respond to treatment. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Parinda, Krantiveer, Ab Tak Chhappan and Welcome. The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force IAF today. Established on 8th of October in 1932, this momentous occasion marked the beginning of a vision for air power that would shape the nation's defence for decades to come. On this occasion, President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have extended greetings to all air warriors, veterans and their families. In a social media post, President Murmu said that the Indian Air Force has rendered exemplary service to the nation, upholding high standards of professionalism, discipline and preparedness. Meanwhile, sharing a video of his stances

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: Listeners, now we have to master music program, so you can listen to the number at the end of heart by Lionel Richie.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी के संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, रात में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठ रहा है, मुँह हाथ धोना है, काम काज को। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो जरूरत

जो एक सुंदर अभिनेत्री और नृत्यांगना के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। भारतीय फिल्म जगत में कई अभिनेत्रियों ने अपनी प्रतिभा, कला, अभिनय और सुंदरता से सेल्यूलाइट को चमकदार बनाया है, और इन अभिनेत्रियों में से एक है राजश्री, जिनका जन्म 8 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था। राजश्री की पहली फिल्म थी इनके पिता और निर्देशक वी शांताराम की सुबह का तारा, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नाम था सोगी, जो फिल्म के किरदार मोहन की बहन का रोल था और इसे इन्होंने अदा किया था। मोहन थे फिल्म में प्रदीप कुमार और इस फिल्म की नायिका थी राजश्री की माता जयश्री। आइए राजश्री पर फिल्माया हुआ

जयश्री वी शांताराम की पत्नी थी, जिन्होंने मराठी और हिंदी की फिल्मों में काम किया, जिसमें मराठी की 1941 की फिल्म शेजारी थी, डॉक्टर कोपनीस की अमर कहानी, शकुंतला, परछाइयां, दहेज जैसी फिल्मों में आपने काम किया और इन्हीं फिल्मों से आप पहचानी भी जाती हैं। आपकी दो संतानों में से एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री और सुपुत्र मुंबई के पूर्व शेरिफ किरण शांताराम है। राजा राम वानकुंद्रे शांताराम और संध्या अभिनीत स्त्री 1961 की फिल्म थी, जिसमें राजश्री भी थी। ये फिल्म कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी। इस फिल्म को 34वें अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चयन की प्रक्रिया जो है साकार नहीं हो सकी। किशोर साहू निर्देशित फिल्म 1963 की गृहस्थी में राजश्री ने अभिनय किया। इनके नायक थे मनोज कुमार। ये फिल्म दक्षिण भारत में बनने वाली पारिवारिक ड्रामा प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड को शुरू करने वाली फिल्म थी।

सन 1963 में आई एक बार फिर किशोर साहू के निर्देशन में बनी राजश्री की फिल्म, नायक मनोज कुमार और फिल्म थी घर बसा के देखो। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी में रोमांस और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण था। ये एक विधवा माँ के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो शहर में अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अपने गांव का घर गिरवी रख देती है। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है और बाद में जो परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। राजश्री ने इस फिल्म में शारदा मेहरा का किरदार निभाया था। आधुनिक पत्नी का रोल श्यामा ने किया था।

बात 1966 की है, फिल्म आई सगाई। ये एसडी नारंग के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इसमें अभिनय किया था राजश्री और विश्वजीत ने, जिसमें राजश्री ने शील नाम का एक किरदार निभाया था। ये कहानी एक स्त्री की है जिसका पति बीमार है और उस स्त्री को चाहने वाला एक शख्स है। ये एक औरत के जीवन की राह और कष्ट, मानसिक यंत्रणा की कहानी है। इस फिल्म में अन्य पुरुष की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी।

मुसब्बत जिंदगी है। इस फिल्म में राशि के साथ थे धर्मेंद्र, महमूद, चांद उस्मानी, देवेंद्र वर्मा, नाजिर हुसैन जैसे कलाकारों को ली हुई इस फिल्म में राशि ने नीता मेहता का किरदार निभाया था और इस फिल्म में गीत SH बिहारी के थे और संगीतकार थे OP नैयर।

सगाई फिल्म की तरह दिल में पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा ये तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं, और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।

सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया।

अब राशिद उस फिल्म का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में

की कहानी है जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती है। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती हैं, एक सुहागरात, ब्रह्मचारी और 1973 में मैं।

आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राज सिंह, पायल, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनेत्री इस फिल्म के निर्माता थे। जी पी सिप्पी।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म मैना राजश्री की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाह उपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई है।

0: आज हमने अभिनेत्री राशि के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जी शाम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली की यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
2: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। सरकार ने सिक्किम में रंगपो और रानीपुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस परियोजना के तहत इस मार्ग को पक्के किनारे वाले 2 लेन के राजमार्ग में उन्नत किया जाएगा। भारत ने अमरीका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाना है। यह कदम हाल ही में अमरीका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और कई ड्रोन दागे। यूक्रेन में कल हुए इस हमले से 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा की है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
1: त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच आरक्षित विशेष रेलगाड़ियों के 2 फेरे चलाएगा। रेल संख्या 04083 नई दिल्ली कटरा 9 और 16 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 3 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी की रेल 04084 कटरा नई दिल्ली 10 और 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कटरा से रवाना होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाई। 1978 में आई फिल्म गमन से नाना पाटेकर ने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को और अग्निसाक्षी में उनके नकारात्मक किरदार को लोगों ने काफी सराहा।
4: किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवंगत नेता को निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पेचिंग में मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress, IMC, at Yashobhoomi in New Delhi in a short while. The event showcases India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation, while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, the meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar was reportedly found unconscious at his home and was immediately rushed to a nearby hospital. As per preliminary analysis, doctors attempted to revive him for nearly 45 minutes, but he did not respond to treatment. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Parinda, Krantiveer, Ab Tak Chappan and Welcome. Prime Minister Narendra Modi today expressed grief over the demise of the renowned actor of Hindi and Marathi cinema, Nana Patekar. In a social media post, the Prime Minister said that Mr. Patekar brought remarkable versatility and creativity to every role and gave characters that will be remembered for generations. The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force today. Established on 8th of October in 1932, this momentous occasion marked the beginning of a vision for air power that would shape the nation's defense for decades to come. On this occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have extended greetings to all air warriors, veterans and their families. India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address structural excess capacity and production and curb non-market policies that distort global markets. The joint ministerial statement signed by the 15 participating economies was released by the Office of the U.S. Trade Representative last night following discussions among G20 trade ministers in Milwaukee, Wisconsin on September 30th and October 1st, 2026. Government has sanctioned 993.64 crore rupees for the development of National Highway 10 between Rangpo and Ranipur in Sikkim. According to Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, the project will upgrade the corridor into a two-lane highway with paved shoulders with major engineering works planned to improve safety and resilience in the challenging Himalayan terrain. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. In table tennis, Indian paddlers Manush Shah and Diya Chitale created history by becoming the first Indian mixed doubles pair to reach the semi-finals of a WTT Grand Smash after beating Romania's Edward Inescu and Bernadette Soz 3-0 at the China Smash in Beijing yesterday. The fifth-seeded Indian duo won the quarterfinal 11-9, 13-11, 11-3. And that is the end of this news bulletin.
6: Yana Kasvani to Anet Simon, the Lenikova Tatskarpa, Vivid Party Program, Arab Sun Station Nikon, Hindi English Kobaranko Knasuna Manaha, Daya Sumin Bako, Anet Simon at Program Nibako, Tasong the Lingit Ranko Knasuna Manangin, Tasong the Lingit Koga Matani Sumin Simang Samarlian, Sangma, Aro Lucas Marakni Gapagit Ranko Knasuna Manangin, Skamba at Simang Samarlian, Samanir Gapagit Ranko Gamatangia. Gitrang wa kasara amaro jajung jarambong ya gitrang ko knasuna matanggen.

0: इन्फॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स व्हिच वी सेलेक्ट एंड वी गो फॉर. तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मेरे मैं सारे फिल्म मेकर्स को एहसास करता हूँ जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज अ मिस्ट्री कि लिप सिंकिंग करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देने हैं. गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का. थर्ड वीक ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं. अच्छा आप अच्छा है खराब मुझे पता नहीं, पर पहले दो वीक तक कोई गाना चला ही नहीं और वही कारण था कि फिल्म भी डिप होनी थी. फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होने शुरू हुए चौथे वीक से.
1: फिर
0: गाने ऐसे बन लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया
1: और रील बनने लगे.
0: रील बनने लगे हजारों की संख्या, मतलब अनगिनत है. तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया. जो मिलता है उसको रजिस्टर कर देते हैं, इतना तो हाँ निकल ही रहा है. मतलब कॉन्स्टेंट इतना बन रहा है कि 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, इतना कॉन्टेंट बन रहा है.
1: तो जहाँ पर गानों का जिक्र चला है और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं वो ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है, तो वो सुना कर श्रोताओं को
0: जी. मतलब जैसे साहू तिवारी का गाना है उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ, लेकिन चलो मैं सुनाता हूँ. जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि सप्तऋषि सप्तऋषि. अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय खुमर रही ऐसे वर के लाने. जाके शीश पे गंगा हार गले में डारो फिर रो सांप, जाके शीश पे गंगा हार गले में डारो फिर रो सांप. इतने सीधे सादे हैं सब कहते भूले नाथ भूले नाथ. शंभो शिव शंभो. जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे

0: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का, अनुभव सिन्हा जी भी भारतीय
1: स्टूडेंट,
0: सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू में नहीं हुआ था, बातचीत की थी, तो उनसे कुछ निर्देशन की भी बारीकियां भी आपको मिली या गानों के बारे में ही?
1: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंदर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया, उनके सानिध्य में काम किया
0: जी।
1: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना, सिनेमा, हाँ सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजिशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नजर है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनकी बहुत कान बहुत तेज है, उनकी म्यूजिकल तुम दिन उनकी पहली फिल्म में इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी, और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या पूरी का, हाँ तप्पड़ के गाने, मिल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे, और उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की है, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
0: अनेक
1: भी, वही अभी की फिल्म है, लेकिन एक जो कमर्शियल फिल्म बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माय गॉड क्या क्या एल्बम्स उन्होंने चूज किए, तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार, लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते उस पर इंटरफेयर नहीं करते, और इनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख, पूरा शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिसपे उन्होंने कहा कि इसको पूरा फिल्म बना के लेके आया, फिल्म का नाम था उस वक्त, उसका नाम डीनो था, फिर उसका नाम बसा हुआ गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं, क्या होता है उस रात को, लेकिन उन्हें उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉब्लम उनको सत्ता ना ही पसंद आई हो, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया, और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है, हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी, और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ, हर बार यही बात बोलता हूँ, और मेरी बात उनसे दो साल दो बार ही होती है, और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतना ही उनके लिए उतना ही सम्मान है जी।

0: तो उसमें देखा कि मेरा लड़का जो है ट्रेन में गाता है और उसका
1: नेत्रहीन
0: नेत्रहीन है वो,
1: है।
0: और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते उसने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में रोना गाता है। अच्छा मैं काफी दिन फॉलोवर में एकदम में दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे भी पिक्चर भी बरसों हुआ बीच पे है वो। मैंने अरे ये कहाँ से बना गया एंड मैं उसको अप्रोच करेंगे पता नहीं सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुला मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होता है और हमारी बहुत छोटी फिल्में हैं, ऐसा नहीं है वही फ्लाइट टिकट देंगे वो आ जाता हूँ। बट चूंकि ये मौका था कि वहां पे था तो मैंने उसको रात में ही 12:30 बजे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा और हैपेंस टू विद इन हाफ एन आवर ही वाज इन द स्टूडियो इन आवर ऑफिस इन स्टूडियो। फिर हमने उसको अपने सेटिंग किया कि कब जा रहा हो क्या है कैसे, पता चला वो 12 बजे सुबह निकल गया 12 बजे, तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरी धुन से मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। उसने अपने ही उस पर तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ उसमें लाभ लगे पर कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट। और वो लोग बोले थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक भी करो, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पर कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पर कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क कर रहा है, स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है नहीं, स्ट्रेट टू हार्ट कि मैंने तेरे ही भरोसे आने वाला, बहुत गूढ़ शब्द है उसमें सागर ने ये डाल दी कौन उसमें एक लाइन है कि मैंने तेरे ही भरोसे आने सागर ने डाल दी अरे काहे की बना बनाई काहे की पतवार
1: बिल्कुल याद आई।
0: और काहे की लबा दई जंजीर सागर में नहीं डार दे, सो बेसिकली इज अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नहीं डार दे और हलमत कौन है खेवन हार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवन हार कौन है, देखिए दो अलग अलग चीजें। अब आंसर क्या है, सीता सखी वहां बैठे हारी शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे लेकिन खेवन हार कौन है, हनुमत खेवन हार सागर में नहीं डार दे, मैंने तेरे ही भरोसे आप ही खेवन हार हो, यू विल टेक मी दैट साइड। सो इतनी सिंपलीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है तो मैं उसमें क्यों लाइन अपडेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट चालू और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, वाइल इट इज वर्किंग सो वेल स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है, दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑन इंटरनेट, यू कैन सी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था 2.5 लाख रील्स थी उसकी, पिछले 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स भी पता नहीं है, देखेंगे बोलते मिलियन हो गया फैमिली के
1: बिल्कुल बहुत तेजी से चर्चित हो रहे फिल्म और गाने
0: गाने
1: गाने लोगों के जुबान पर, बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना और गाने हिट हो रहे हैं रील बनने, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनाते हैं।

0: के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरे प्रू आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या बात है?
1: हुआ ऐसा कि मैं सारी सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया, पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए मैं लिखने बैठता था, तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइस आर सो डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई कॉल कर रहा है, तो कोई मैसेज कर रहा है, उसको आपको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग, एंड आल्सो आप उसको सर्च करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे, तो वो भी आपको कहीं से कहीं नहीं जाता
0: है
1: और समय बहुत जाता है उसमें, तो मैं एकदम तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी।
0: क्या बात है,
1: और सब कमरे से बाहर, जो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, उसको गुफा में बोलते हैं कि हम, तो मैं वो गया, वो सेट हो जाता है पूरा, पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ, मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया, इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है, नो चेंज इन द फिल्म इज स्ट्रेट। एक बार तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव, जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: मोबाइल में लिख के,
1: लेकिन मोबाइल में आप लिख सकते हो, पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट फील होता है ना आपको, आपका माइंड वो जैसे बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए जो बोलिए कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है, वो हाथ से जब लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो डिवाइस आपकी आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से मैसेज नहीं आ रहा उसमें, और बीच में से कॉल नहीं आ रही है, ऑल दैट हैपेंस, एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना वो सेंसिटिविटी चली जाती है,
0: बिल्कुल कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन
1: डिस्ट्रक्शन होते
0: रहते हैं, सही कह रहे हो। और ये बात है कागज से लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ लेकिन कागज रखा हुआ साथ में, ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुना है?
1: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम फेवरेट, इसका पंप जरूर है, जी जी जी,
0: संगीतकार
1: तो जी।

0: सारे फिल्म का ये गाना था, और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं। बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी, मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल में मैंने गया था, तो मैंने हमारे मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे माता जी पिता के साथ में ट्रेवल करा था एक कालपी से उरी के बीच में, और वहां पर रास्ते में एक भवानी मंदिर, भवानी जी का माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है सबसे स्ट्रॉन्ग। और अचानक से गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत डकैत ऐसा नहीं। एंड गाड़ी रुक जाती है, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ, लिटरली वो तो ग्लास जो था उसके पास, मैं बच्चा हूँ मैं, वो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। यहाँ पे देख रहा हूँ बड़ा सा खुला, और उस पर छोटी सी महिमा, उसमें जो ना पट्टा बांध रखा है, उसके यहाँ पर बंदूक है, वो बड़ा फैसिनेटिंग था। मतलब फॉर अ किड अचानक से इतना कि कोई आया है जिसको, और ऐसी देश में किसी को देखा नहीं, तो वो फिर वो दर्शन वर्शन करती है, भगवान मंदिर में अपना सर झुकाती है, और फिर वो चली जाती है वहां से। तो जी कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली लूट के नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जो मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल या कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कॉलेज भी जो ना कुंभ ऋषि की धरती थी, वो मुझे बहुत लेटर जानना है। वहां पे रानी लक्ष्मीबाई जब वहां से निकली थी, और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कॉस में एक जगह थी, यहाँ पे उन्होंने रात गुजारी थी, मरण वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनकी। तो ये सारी चीजें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा बहुत ही, मतलब ब्रिज की लठमार, और थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है, तो ये वो लहजा जो है ना, मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है। स्पेशली तानसेन तोमर और वो बैंडिट क्वीन वगैरह जो फिल्म्स हैं, इन सब के अंदर, इनफैक्ट वो मत्था, वो यूज टू स्पीक उसमें पीपी लाइव में, वो भी बुंदेली बोलता है। फिर वो एक और बहुत भाभी जी घर पे हैं, वो एक सीरियल है, वो मेरे बहुत क्लोज मित्र थे उनके, जिनके अभी उनका देहांत हो गया, जिन्होंने जो राइटर थे उसके, वो उन्होंने एक कैरेक्टर हप्पू सिंह। तो ये सब बहुत बुंदेली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, पॉपुलर बोली है, पर वो कभी ऐसा मेन स्ट्रीम में गाने मेन स्ट्रीम नहीं होते। और ऐसा नहीं कि मतलब बुंदेली ढूंढने के लिए बुंदेली ढूंढा था, मुझे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की बोलियों में गाने चाहिए थे। तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे चले, सांसा आले आसे चले अब भी है, फिर ये ब्रिज है, आवागमन थोड़ा ब्रिज और इसके बीच का है, आवागमन
0: जी
1: मिटा दो भूल शंकर, तो ये सारे गाने जो है कि करके, वो आइडिया ये था कि जितना हो सके

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनेगा अगले सप्ताह इस समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंगर, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान।
1: आज की

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव में मिठास है।
1: घनश्याम नाम शिव नाम सुमिरो
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सिंह।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, ये मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सदुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं संगीत सरिता सुबह और शाम

0: उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जिनके मुफ्त की कमाई बंद हो गई है वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो कितने

0: व्यवस्था होती तो सरकार का 5 लाख करोड़ रुपए लीकेज में चला जाता और ऐसे लोगों की जेब भर देता। मोदी ने इसको रोका है।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाना है। यह कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिल्वॉकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर में वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।
2: ऑपरेशन सिंधु के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
1: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाई। अभिनेता नाना पाटेकर को फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय के लिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु

0: पर्यटन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु पर्यावरण सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की। श्री बोवन ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री भी हैं। ये बैठक COP31 सम्मेलन से अलग हुई। बीजिंग में मोहम्मद शाह और दिया चिताली ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। मोहम्मद और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहले भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Shagun Chopra.

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप और टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: Nesima Western Brown Sangmane gapa cha song tang git rang ok nasu na matna o chalangwera makne gapa git ko kap matas ke gi sikwa asung tang ko aro songwa na sing ai git rang ok nas kana matangen

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशंस हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी न केवल सिर्फ अंतिम गांव तक बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 21वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि बैठक में उन्होंने संतुलित और सार्थक परिणामों के लिए भारत की प्रतिबद्धता और COP31 के वार्ताध्यक्ष के साथ मिलकर काम करने की पुष्टि की। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 26/11 और पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी।
1: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Yanakaswani Tourisme de la Nuit, Agatskapa, Hindi Kong Kukna, Sonaman Aha, Goya Sumirmakun, Simanga, the Alsan, Altamni, Programango, Sumana Baksa, Sul Sul Yatanga, Skampa, the Alsani, Programgo Yatanga, Chigi Vizimichka, Sima, Chasangi, Drunko, Matani, Sumayo, Hedonat Moman, Aroletinson, Moman Nirangapagi, Drunko, Kna, Sonaman Angen. Tok bazim ni chibo isong na matilan ni gitrago matani sumaya principal marak aron ni dole gapa gitrago kna suna managen tok bazim ni kwalchi na simang na simang ni mamli gibi atang gapa chasong tali gitrago kna suna managen sni bazim han na simang make a rice series ni box ni jekon biku basangma Jian Village Community Facilitator, Napat Chris Southwest Cow Hills New Watching, and Uno Sandia Aniko Knasuna Matangan. Sneva Jimmy Chibo Ahon Simang Tongtong Tong Hindi Film Nigit Drago Knasuna Matangan. Sneva Jimmy College Show Sponsored Program Kisan Bali Ni Bak Kulat Chiko Simang Knasuna Matangan. Chet Pazio Deliniko That's kind of Hindi cover, Chip Bazil made poor English cover, Chip Bazimichkan, Simon West Music from Gok Nasuna Manangan. Chip Bazimich College, you are home, the Lindico, that's kind of sports game, Chip Bazimich of Bribo or Absent Station and Gone Hindi cover, Scuba Zio English cover, Scuba Zimich was spotlight, Scoo College, you will be part of one. Chicken Bazio Hindi cover, Chicken Bazimit Boa English cover, Chicken Bazimit Kuan, Simang Bon Kame, Vivid Party Program Co, Knasona Manangan, Iran, the Al Sana Tamne Program Rama. Mangapon Yatani Office of the Gow Hills Autonomous District Council to our Land and Revenue Department. This is to inform all concerned that the Gow Hills Autonomous District Council is pleased to announce the official opening of the Land Record Management System portal, which has been made effective from 11/9/2026. Applicants can now submit their application online using a one-time registration system exclusively through the official link, that is ghadc.nic.in. The portal has been developed and facilitate online application for new patas, new renewal of patas, pata convention, resettlement, pata mutation, land evaluation, no objection certificate, trace map, land holding certificate, and jama bandi copy. In case of any difficulty in accessing or using the portal, applicants may contact the help desk at Land and Revenue Department to have for necessary assistance. Apsan ko na chikuchi wiatangyan. Office of the Gow Hills Autonomous District Council Lita Land Record Management System Protocol Hazalini Kokdok Bilsini September Zoni Chisatarikoni Abachingateha Jiran Vital Vita Pata Barinual Patarangko, Ringan Kanagpa, Aro, Resettlement Nangko Kanagpa Nangiching, Omang GHADC ni Ongunan Official Ring Nangko Application Nangko Sakin Kanagpa Mangin, Aro Registration Nangko Kanagpa Mangin, and New Yatea, Omang ni Ongunan Official Ring Ara, GHADC.NIC.IN. Ya, Aganapunan Ring Ara, One time registration ko ka e submit ka lang taman gin and yung yata ha. Yung yata ni ko na simang akas pa ni tuwa ni ko na so na maninga. dan piksan is ana na simang mangapan program ko knal sona mat nangyan yan akasvani tura.
3: Yang siang itu nak kerja, dahulu hari zaman ini.
2: Papa yang tak kerja ni yang ni nak ni nampak wa, nak di cikup pas ni yang kau di dompet masa nampak wa.
3: Nampak tu, mana kau masih ya? Aku cukup jangan sekarang kau cakap mana dapat tak cakap ini. Aku cakap sekarang kau cukup mana aku nak bicara.
2: Aku dah cakap.

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: Yakaswani to Yasumene Bako, Avalat Kimatan at Simon, Tasubutani get drunk or Knasuna Matangan. Tasubutan get cook at Matani, Sumen at Simon last come by here to let Momina Gabagit cook at Matanga, get to ma. Matne, Nang Tiko, Rory Babu, and Sambauna.

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या फिर स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: Nasimang tasong panligid ranggo, bakmata ni sumayaw heto na at moment, aroli

0: خیلی محبوبه که دوباره نابسون دیگه تیلی کامی بیشکر آر کشور کمار کیا بازونی این بخشی که رشنا تیجا هودی برمین کی درستی पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक सौ बात और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं अपनी सबसे ढूंढ रहा था कहाँ थे तुम, तब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: अक्टूबर सेमिनार के सितारे

Ich war so nie so ne ab und zu nachher wieder fikir was geht gar an bekschen geht gar sitzen den Bedmen सेहत की कुछ जरूरी जानकारी फिटनेस की कुछ आसान सूत्र व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1 इज गुड फॉर ये फॉर्मूला क्यों बने हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है पहले देखेंगे और पहले का सबसे पहला अंगूठा जो होता है जिसे प्लस वन

0: 900 साल की जिंदगी में
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु है डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
0: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से होगा, उठेंगे तो उठ गए तो बिल थैंक यू बोल के उठना।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म वारिस का ये गीत था किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया। अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। विविध भारतों पर बहती है सुरों की सरिता, गूंजती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता और बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता और सिर्फ विविध भारती पर।

विवाद के सिनेरियो पर श्रोताओं, आपके रेडियो सेट पर आ चुके हैं कार्यक्रम सुनना सफर और हमारे बहुत सारे श्रोता भी फेसबुक के जरिए इस कार्यक्रम में अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज भी रहे हैं। नए श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे। नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए आप अपने उद्गार सुनना सफर कार्यक्रम में भेज सकते हैं। नाना पाटेकर के लिए भेजे गए आपके कमेंट्स हम शामिल करेंगे कार्यक्रम में। शेष कार्यक्रम हमारा जो आज का है वो फेसबुक की पोस्ट पर जो इबारत है उसके अनुसार ही होगा। तो ये जो इबारत है वो भी आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं जो हमने आज फेसबुक पे पोस्ट की है। हवा में हल्की सी सिहरन फिजाओं में रुमानियत, ये कहती है गुलाबी ठंड में दस्तक दी है। सुबह की ओस से रोशन फूलों के चेहरे और रात की नम चांदनी को कहीं नजर न लग जाए। गुलाबी ठंड में लिपटे मोहब्बत के जादू नजरों ने सुर्ख वादियों से पर्दा हटाया है। पहाड़ों की सुबह और अनुरागी शाम अब देखते ही बनती है। राजस्थान के गुलाबी रंगों में खिलती चांदनी रात तो कहीं कश्मीर में हरूद का मौसम सुर्ख लाल रंग के गलीचे की रौनक जैसे सपनों की रानी ने ओढ़ी हो लाल रंग की चुनर। आज के सुंदर सफर कार्यक्रम में श्रोताओं, ये पहला गीत सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर की याद को हम समर्पित कर रहे हैं।

हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नाना पाटेकर को याद किया है। आप अपनी बातें, अपने उद्गार लिख सकते हैं श्रोताओं। आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे जरूर। और अंकुश फिल्म का ये गीत हमने श्रद्धांजलि स्वरूप सुन पाया। अशोक खोसला, मुरलीधर, घनश्याम वासवानी और शेखर की आवाजें थी। अभिलाष का लिखा ये गीत था, कुलदीप सिंह की तरफ थी। और हमारा आज का जो शेष कार्यक्रम है, फेसबुक पर जो दी गई इबारत है उसी के अनुसार है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, गुलाबी ठंड इसलिए खास है क्योंकि इसमें मौसम केवल बदला नहीं करता, मन भी बदलने लगता है। ठंडी हवाएं भीतर की उदासी को सहलाती है, धूप स्मृतियों को गर्माहट देती है, धरती में लाल चुनरी ओढ़ी है, आसमान ने प्रेम का संदेश संभाल रखा है और पूरी प्रकृति किसी अनकही मोहब्बत के खूबसूरत गवाह बनकर हमारे सामने खड़ी है। ये हमारी एक श्रोता लिखती है। वैसे हरुद नाम का एक शब्द हमने अपनी इबारत में इस्तेमाल किया है श्रोताओ, ये शब्द किस बाबत हमने लिखा है अगर ये आप बताएं तो क्या ही अच्छा है। वैसे ये शब्द कश्मीर की वादियों से वाबस्ता है, ये आपको बताना है। और आपके शहर में मौसम कैसा है अब ये आप बताइए हमें। एक हमारे यहाँ श्रोता लिखते हैं, ठंड की चादर धीरे धीरे दस्तक दे रही है, खुशनुमा वातावरण चारों ओर फैल रहा है, सुबह फूलों में ओस की बूंदे फिजाओं की रवानी, गुलाबी ठंड रात में नहाई चांदनी सुरख वादियों में मोहब्बत का नजराना देखते ही बनती है, हमें प्रकृति के और करीब ले जाते हैं। और गीत भी उन्होंने बताए हैं। श्रोता ने कहा, अश्विन महीना आ रहा है, बल्कि आ चुका है श्रोता, और गुलाबी ठंड की पहली तरह मखमली आहट सुनाई दे रही है। सुबह की ताजी हवा में अब एक हल्की सिहरन है, उषा काल में सूरज की गुनगुनी धूप घास की पत्तियों पर मोती जैसे चमकती ओस की नन्ही बूंदे मन को मोहित कर रही है। यही हल्की ठंड अपने साथ नवरात्रि, दशहरा और काजली पूर्णिमा और दीपावली, इन मन भावन त्योहारों की खुशबू और गर्माहट को लेकर आ रही है, जहाँ इंतजार ही तो रहता है और इंतजार जब मुकम्मल हो जाए तो क्या ही बात है। वैसे गुलाबी इस शब्द से जो गीत आपको याद आ रहे हैं वो आप हमें लिख सकते हैं और अपने

सुना इस गीत के गीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। वैसे इस फिल्म को अगर आपने देखा है तो इसमें बहुत ही अलग और कम चर्चित एक कलाकार थे, तो उनके बारे में भी अगर ये उनका नाम अगर आप लिखें तो क्या ही बात है। आबू फिल्म का गीत हमने आपको सुनाया, सुनने को उम्मीद की तरह थी। हमारे एक श्रोता ने नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखा है कि हमारे सिने जगत को नाना पाटेकर जैसे कलाकार के जाने से बहुत क्षति हुई है, हमने एक शानदार कलाकार खो दिया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर जी का देश प्रेम फिल्मों में झलकता है, देश से बहुत प्यार था उन्हें, सामाजिक मुद्दों को बार बार फिल्मों के जरिए उठाते थे। एक और श्रोता ने लिखते हैं कि नाना पाटेकर की हर फिल्म मैंने देखी है, उनके अभिनय की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ। आज मुझे फिल्म प्रहार का सीटी वाला सीन याद आ रहा है, सीटी भिजवा कर उन्होंने उस फिर एक मतलब उन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी है फिल्म की। एक श्रोता

हमारे आज के जो आज की जो इबारत है, टेक्स्ट है, उस पर लिखते हैं कि हवाओं पे लिख दो, हवाओं के नाम इस गीत को उन्होंने याद किया है। ठंडी हवाएं लहरा के आए, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। जी हाँ, गुलाबी शब्द तो ऐसा है छोटा, इससे बड़े सारे सवाल हैं जो आज आपको बताने हैं। मसलन एक बड़ी प्यारी सी एक मछली है, उसका क्या नाम है जो गुलाबी होती है और कहीं तो भारतवर्ष में पाई नहीं जाती, लेकिन आप बता सकते हैं तो बताएं जरूर कि उस मछली का क्या नाम है। और राजस्थान के खास शहरों को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। और अपने शहर का मौसम तो आप बता ही रहे हैं, गुलाबी ठंड क्या आपने राजस्थान में कभी महसूस की है, या इस समय कभी आप राजस्थान गए हो तो वो भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी धूप है, लेकिन शाम को मस्त ठंडा मौसम हो जाता है। जी हाँ, शाम भी बहुत ही सुहावनी होती है आजकल। ये फिल्म आपको पहचान

Es gibt Leute, die bieten mir ab und zu mal Schüttel Abo wo die Packung mal लगता नहीं है कि सुबह सुबह हल्की हल्की ठंडे पर फिजाओं में रोमानियत और रंग बिरंगे फूलों पर ओस की बूंदे

0: दिमाग दोनों को तरोताजा कर देती है। इस मौसम में न बहुत ज्यादा गर्मी और ना कपकपाने वाली सर्दी होती है, कांपने वाली सर्दी मन एक अजीब सी शांति और अपनों के बीच आने का एहसास जगाता है। फूलों पर गिरी ओस की बूंदे मानो प्रकृति ने मोतियों के हार से सजाया हो, इसलिए ये नजारा आंखों और दिल दोनों को सुकून देता है। लेकिन राजस्थान में कुछ अलग सा सुकून होता है श्रोताओ, वहां के बारे में आप जरूर लिखिए कि वहां की रातें अगर आपने देखी है इस गुलाबी ठंड की, वैसे भी तो पूरा शहर पूरा स्टेट ही कहें तो गुलाबी गुलाबी सा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय फिल्मों में नाना पाटेकर जी का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और उनकी फिल्मों के बारे में लिखा है क्रांतिवीर, तिरंगा, परिंदा, शक्ति, अग्नि, साक्षी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार से जान डाल दी। नाना जी की निर्देशित फिल्म प्रहार मुझे उनकी सबसे प्यारी फिल्म लगती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर के संवाद अदायगी उन्हें सबसे अलग करती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि भारत के बारे में कि जिसका कश्मीरी भाषा में अर्थ पतझड़ का मौसम होता है, ये समय खूबसूरत मौसम सितंबर के अंत तक से लेकर नवंबर के मध्य तक रहता है। जी हाँ, और जो अक्टूबर का महीना है श्रोताओ, ये खास कश्मीर जाने के लिए ये मौसम जो होता है, ये समय जो होता है बड़ा ही मुफीद होता है। इस समय अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि चिनार के पत्ते किस तरह से रंग बदलते हैं। और इसी को लेकर हमने इबारत की जो अंतिम लाइन थी वो लिखी थी, क्योंकि लाल सुर्ख रंग से चादर या ओढ़नी सी कहीं कश्मीर में बिछी हुई नजर आती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कश्मीर में हरुद का अर्थ पतझड़ का मौसम होता है, और कश्मीरी संस्कृति, जीवन शैली और आर्थिकी में इस मौसम का एक बेहद खास स्थान है। इसके साथ ही कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी हारुद नाम की एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि कल शाम की बारिश है और भोर की बारिश ने हमारे शहर को बेहद खुशनुमा बना दिया है। हवा में ठंडक आ गई है और अभी धूप का टुकड़ा हमारे छत और बालकनी पर भी आकर सिमट गया है, जैसे कह रहा हूँ ठंड आया है, मैं तो भी साथ में हूँ। जी हाँ, जहाँ ठंड देर से पड़ी है श्रोता, वहां पर तो ये बारिश जो होती है वो बेमौसम आती है, जिससे कि ये ठंडक को ला सके। फिलहाल गुलाबी ठंड है।
1: ये रंग सुनहरा, ये धीरे सुनहरे आते, कोई राज नहीं।

कश्मीर की अगर बात करें तो स्वतः तारीफ कितनी भी करें, शब्द इस प्रदेश के लिए कम ही पड़ जाते हैं। आप सुन रहे थे एसएच बिहारी की रचना, संगीतकार आप अगर बता दें तो क्या बात है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी डॉल्फिन अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है और इसके बारे में पूछा क्या सही है, इसको जानने का इंतजार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोता। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर साहब चले गए और उन्हें हम याद करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि अपने दमदार आवाज और अभिनय से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर जी को हम उनके श्रद्धांजलि में देते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के ये इबारत केवल मौसम के बदलाव का वर्णन नहीं करती बल्कि प्रकृति की मानवीय भावनाओं के बीच गहरे रिश्ते का एक सुकुमल दस्तावेज है। गुलाबी ठंड की आहट को हवाओं के सेरन और फिजाओं की रुमानियत के साथ पिरोना बेहद असरदार है। ये ठंड सिर्फ तापमान का दिखना नहीं बल्कि भावनाओं की जागने का प्रतीक बन जाती है। ये तो बताइए श्रोताओं कि गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, यानी आपको सवाल याद रखने हैं। पहला सवाल, गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, और दूसरा सवाल एक और है कि गुलाबी रंग का इस्तेमाल खूब हमारे किस त्योहार में किया जाता है, और एक जगह की तो पगड़ी भी गुलाबी है। तो आप बताएं, ये सारे सवाल आपके लिए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो इस समय शाम को मस्त ठंडा मौसम हो जाता है लेकिन दिन में अच्छी धूप है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक दी, जैसे भी है फिजाओं में रंग से घुलने को आ गई। उस सुहाना मौसम, सुबह की धूप और घास पर उसकी बूंदें मोती बिखरने लगे, ऐसे में विविध भारती का साथ, वाह क्या बात है। जी हाँ, विविध भारती है हमेशा से आपके साथी। तो ये गीत आप सुनिए और जो हमने सवाल आपसे पूछा वो भी बताइए। इस गीत में जो कलाकार नजर आ रहे हैं श्रोताओं, उनको अगर आप बता सकें उनके बारे में तो क्या है?

शराबी आके जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल

ਚੇਤਾਰੂ ਸੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ।

0: गुलाबी आंखें जब तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया।
1: श्रोताओं, सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर की यादों को आप हमारे इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं।

0: जरा सा हंस के जब देखा तूने मैं तेरा विस्मृत हो गया। गुलाबी आंखें जब तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया।
1: नंदारा जिसका नाम पर फिल्म आया गया द ट्रेन फिल्म का गीत आपने सुना और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने तमाम अपनी बातें हमसे साझा की है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ में भी सुबह सुबह गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, रात से ही ओस गिरना शुरू हो जाती है, सुबह तो ठंड लगती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि इस समय कश्मीर में फसलों और खासकर केसर की कटाई का मौसम ये माना जाता है, जिसे स्थानीय लोग उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। और एक हमारे श्रोता नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखते हैं कि इनकी फिल्म नट सम्राट देखी है, क्या भूमिका थी उस फिल्म में इनकी, और अभी तक वो आखिरी दृश्य याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद अदायगी उन्हें बहुत पसंद है। तो मेरे बहुत सारे श्रोताओं ने नाना पाटेकर जी को याद किया है। वही हमारे श्रोता लिखते हैं कुछ गीतों के बारे में, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी कहां से लाई हो जाने उनकी ताबी चेहरा, और तमाम गीतों को इन्होंने याद किया है, लिखा है इसके बारे में। एक और श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम की गुलाबी ठंड, वादियों की हवाएं और चांदनी रातें अक्सर दिल में किसी खास यादों का चिराग जला जाती है। इस खूबसूरत माहौल में किसी को याद करना और खो जाना स्वाभाविक। हवाओं में गुली है गुलाबी सी ठंड, चांदनी रात में बहकी है ये वादियां मिलंग, ऐसे में दिल को कोई याद न आए तो कैसे हो सकता है। और भी कुछ लाइनें इन्होंने लिखी हुई है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सुबह सुबह जब मैं छत पर जाती हूँ तो एक दो दिन से हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, इसका मतलब है मौसम करवट ले रहा है और जो त्योहार है वो भी आने वाले हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और जी हाँ, नाना पाटेकर की यादें तो कुछ ऐसी ही है। श्रोता, आज की इबारत जो गुलाबी ठंड को लिए हुए है इसी बाबत हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो जो जयपुर है वो तो पिंक सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से एक कार्यक्रम आता है रात 8 बजे। इस इमारत की गुलाबी रंग को ये क्या खासियत है ये

날씨 어디서 누가 볼 뻔뿐 아니게 공장을 보니 고속기도 앞선들이 되시도 아뭐 그치 서반이 조금 앞서 보시 되겠구나 그런 느낌 좀 궁금해 그러는데 이 앞에 비트니 비제 또 앞에 세상 비제 아주 이때 뒤에 되시도 제스키 굴라비 뻔푸대 이 콘셉트 뒤에 또 모든 서반이 기모차를 앞으로 그렇게 잘 보셔야 할까 아주 굴라비 जो चूना है उनका बाजार भारत में कहाँ है एक और आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि एक सुंदर सा गुलाबी फूलों का पेड़ होता है इस पेड़ को यानी इस फूल को क्या कहते हैं तो अब बढ़ते हैं उन श्रोताओं के कमेंट्स की तरफ जिन्होंने अपने कमेंट्स भेजे हैं हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि हर बदलता मौसम अपने साथ एक नई आभा लेकर आता है और प्रत्येक जाने वाले मौसम अपनी नीति जानता है जाने वाले मौसम बिना लेते समय कुछ मुरझाया ऐसा कुछ अलसाया ऐसा लगता है इसलिए गुलाबी ठंड ये इस मौसम में मन में अलग ही उत्साह को सुरूर रहता है बदलते मौसम के मन पर कोई व्याख्या नहीं लिखी जा सकती जो सामने है उसका स्वागत करके ही जीवन को चलाने का हुनर सीखना होगा गुलाबी ठंड अपने साथ ढेर सारे उत्सव लेकर भी आती है और ये सच है कि ये प्रकृति ईश्वर की सुंदरता का वर्णन करती है हर बदलता मौसम इसकी पहचान है तो ठंड जो है उसके तो शुरुआती दौर है और आपने इसकी बहुत सारी तैयारियां भी की होंगी तो क्या खास आप ध्यान दे रहे हैं ये भी आप हमसे बता सकते हैं एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं ठंड रोशन नजर पर्दा गुलाबी कश्मीर और सपनों जैसे ये शब्द इन्होंने चुने हैं एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं चला मौसम में कब गुलाबी सर्दी ने अपना शबाब भूल दिया सुबह योगा में जाती हूँ तो पार्क में हर घास पे छोटे छोटे शब्दों की बूंदे किसी चमकीले मोती से लगती है हल्की सी सिहरन उड़ते हुए पंछी नीला आकाश सब कुछ जैसे मन

دي ممكن في وقت انا جاكل في معاك بار مسكرا دو في مكان يجي طب سون ريت هي هما لي شوطة مني اسكيت كي باتي بيب اللي قلت لك كي هما لي شوطة لك تاني كي عم جاكو كي جو سنارت كي بات كده هي جو بات بارتي بر سنات عار بجي تلكم برسالة هوتا ہے اس کا نام ہوا محل ہے جی ہاں اور یہ عمارت جو ہے وہ گلابی پتھروں کی سندر سی جو ایک تعمیر ہے دیکھتے ہی بنتی ہے एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक जैसे दी है और फिजाओं में कुछ रंग का एहसास होता है, घास पर भी उसकी बूंदे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी रंग लाल और सफेद रंग को आपस में मिलाने से बनता है, क्या ही बात है। एक और श्रोता लिखती है कि बेमिसाल अभिनेता नाना पाटेकर का जाना आंखों को नम कर गया है, ईश्वर महान अभिनेता को अपने शरण में ले, दिल से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ, विनम्र नमन। एक और श्रोता कि इसी रंग के बारे में, गुलाबी रंग के बारे में, लेकिन तितली का जो पंख पिंक होता है गुलाबी होता है उस बारे में आपने लिखा नहीं, और हमने आपसे पूछा था कि गुलाबी चूर्णों का सबसे बड़ा बाजार भारत में कहाँ है, वो भी आप जरूर बताएं अगर आप बता सकते हैं तो। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ कोलकाता में अषाढ़ महीने से बारिश लगी हुई है जो अभी अश्विन मास तक भी हो रही है, कभी बरसात हुई थोड़ी, अभी थोड़ी थोड़ी गुलाबी ठंडी सी हवा शुरू हो गई है, हवा में पूजा का

फिल्म आराधना के इस गीत के साथ ही श्रोताओं श्रीवास्तव फिल्म कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। आपके सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: नमस्कार दोस्तों, आसमान को देखकर अक्सर हमारे मन में उड़ने की इच्छा जागती है, लेकिन किसी देश के
1: नून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वत्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G connectivity reaches every district with over 5,50,000 base stations. GST Council deliberates on policy reforms to resolve disputes and improve input tax credit flow. Supreme Court directs Centre to form committee to curb unethical pharma marketing practices. Veteran actor Nana Patekar passes away. India accuses Pakistan of doublespeak on terrorism, says Islamabad cannot gloss over support to terror groups. And the nation honors sacrifices of air warriors on Air Force Day. Prime Minister Narendra Modi today said the Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India, inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi. Mr. Modi highlighted that over the years, this platform has emerged as a platform showcasing India's progress and its aspirations. He said today, 5G connectivity has reached every district of the country. He added that there are now more than 5,50,000 base stations to operate 5G connectivity across India. He said the government is now working to connect around 25 crore students through various digital and online education platforms.
2: 2022 में इसी मंथ से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G rollout से 5G reach out की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में है जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बढ़ी है।

0: की बात को किसे जगाती हो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है।
1: रिसिपिएंट ऑफ 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ही वाज एक्लेम्ड फॉर फिल्म्स इंक्लूडिंग परिंदा, क्रांतिवीर, अपनी साक्षी, नट सम्राट, अब तक छप्पन एंड यशवंत। He made his Bollywood debut with Gaman in 1978 and went on to deliver notable performances in Shakti, The Power, Apharan, Taxi No. 9211 and Rajneeti. He gained widespread popularity as gangster Uday Shetty in Welcome and reprised the role in Welcome Back. He remained active in cinema until his final years, appearing in Houseboat 5, O Romeo and Subedar, which was released recently. Prajna, Akashwani News, Mumbai.
2: India has accused Pakistan of doublespeak on terrorism, saying Islamabad is attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. India said the world has not forgotten the 9/11, 26/11 and Pehelgam attacks. Exercising its right of reply in the UN General Assembly, India's First Secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers and sponsors. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall conditions over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim during the day. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G connectivity reaches every district with over 5,50,000 base stations. GST Council deliberates on policy reforms to resolve disputes and improve input tax credit flow. Supreme Court directs Centre to form committee to curb unethical pharma marketing practices. Veteran actor Nana Patekar passes away. India accuses Pakistan of doublespeak on terrorism, says Islamabad cannot gloss over support to terror groups. And the nation honors sacrifices of air warriors on Air Force Day. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद ने विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। कहा पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
4: पिछले वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है, इसलिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMT को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने

0: का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेत्र निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को क्या है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा

0: करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना

0: game. The rules for that, that's the game. Safe. Give it by the tea party.
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी फिटनेस की कुछ आसान सूत्र
2: व्हाट इज एग्जैक्टली फोर पोस्ट ये फॉर्मूला क्यों बने हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है पहले देखेंगे सबसे पहला मृत जो होता है चार भी अगर हम देखेंगे एक होता है वायु तत्व फिर होता है आकाश तत्व फिर होता है भू तत्व फिर होता है जल तत्व से फोर प्लस वन
1: जीने
2: का सोचो तो वो अच्छे से होगा
1: इसलिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर
2: Absolutely new, but we have to see things through, so I have a movie.

Oh,

I'm gonna go to bed.

इतने प्यारे हसी हरिया इनसे कह दो खुशी।

0: आप सुन रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
2: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि आज दूरस्थ गांवों और गरीब परिवारों का हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सम्मेलन में दूर संचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा गया है। मुकदमे की अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं से अपनी पहचान बनाई। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
3: उनके फार्म हाउस परिसर में स्थित पसंदीदा स्थान पर शाम को अंतिम संस्कार किए जाएंगे। नाना पाटेकर के निधन से फिल्म जगत के साथ साथ कला और सामाजिक क्षेत्र में भी शोक की लहर है। अपने प्रभावशाली अभिनय से उन्होंने मराठी और हिंदी फिल्म जगत में अलग पहचान बनाई। उनके निधन पर सह कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नाना पाटेकर के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार के लिए डोंजे स्थित उनके फार्म हाउस परिसर में आवश्यक तैयारियां की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए माधव जायभाई के साथ माधवी कुलकर्णी, पुणे।
1: भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघुपुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today said the Indian Mobile Congress IMC platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India, inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi. Mr. Modi highlighted that over the years, IMC has emerged as a platform showcasing India's progress and its aspirations. Mr. Modi said today 5G connectivity has reached every district of the country. He added there are now more than 5,50,000 base stations to operate 5G connectivity across India. He said the government is now working to connect around 25 crore students through various digital and online education platforms.
2: में इसी मंथ से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में है जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बढ़ी है।
4: The 57th GST Council meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is chairing the meeting. The GST meeting is deliberating policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said the government will propose a 5-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. The Supreme Court today directed the Centre to constitute a 3-member committee to examine whether pharmaceutical companies' marketing practices, including gifts and other benefits offered to doctors, require statutory regulation. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued the direction while hearing a plea seeking action against unethical interactions between drug companies and doctors. The Centre has been asked to file an affidavit on compliance with the matter listed for further hearing on January 29th. The nation is celebrating the 94th anniversary of the Indian Air Force today. Air Chief Marshal A.P. Singh today highlighted the Indian Air Force's growing capabilities and stressed that its true strength lies in its air warriors rather than merely in advanced equipment and technology. Addressing on Indian Air Force Day celebrations at Hindon Air Base in Ghaziabad, Air Chief Marshal Singh emphasized the role of air power in protecting national interests and described the Indian Air Force as the custodian of the skies.
5: The Indian Air Force, being the custodian of the air power, understands its role and responsibilities and is always alert, committed and ready to meet any contingency. We believe that any Air Force can have the most advanced aircraft in the world or most advanced systems in the world, but its true strength is measured by its operational preparedness. That is how quickly and confidently it can act whenever the call comes.
4: Veteran actor Nana Patekar

0: साहब को विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप ये गाना सुनवाया इस प्रोग्राम में, और अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि एक और प्रोग्राम हम प्रसारित करने वाले हैं शाम को 5:30 पर नाना पाटेकर से बातचीत, जो हमारे विविध भारती के संग्रहालय में संग्रहित है और उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन के किस्से हैं उसमें, उनकी फिल्मों के किस्से हैं, लेकिन अब विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मेरा सौभाग्य है कि नाना पाटेकर से कई बार मुलाकात का मौका मिला और ये बातचीत जब हमने रिकॉर्ड की थी कई साल पहले तो हम उनके निवास पर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, उनके स्टूडियो में गए थे रिकॉर्डिंग के लिए और बहुत ही जिंदा दिल इंसान नजर आए थे और इतनी सहजता से इतनी विनम्रता से वो बातचीत की है कि मैं क्या कहूँ। इस वक्त बातें करते हुए उनका चेहरा आंखों के सामने है और इसके अलावा कई बार मुलाकात हुई, तो आज 5:30 पर हमारे श्रोता वो प्रोग्राम सुन सकते हैं जो उन्हें उनके नाम पर हम प्रसारित कर रहे हैं
1: जी।
0: और आज वायुसेना दिवस भी है,
1: तो वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे जो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में वायुसेना के वीर जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है
0: और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में भी वायुसेना का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हमारे लड़ाकू विमान केवल तकनीकी शक्ति का प्रतीक नहीं होते हैं बल्कि वे देश की सुरक्षा संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं
1: और ये दिन देशवासियों को उन वीर योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर परेड, एयर शो, विमान प्रदर्शन और हवाई करतब आयोजित किए जाते हैं।
0: वायुसेना केवल साहस और रोमांच का क्षेत्र नहीं है बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी, तकनीकी दक्षता और देशभक्ति का संगम भी माना जाता है। वायु योद्धाओं का जीवन युवाओं को यह संदेश देता है कि ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए मेहनत जरूरी है और साथ में आत्मविश्वास और अनुशासन बहुत ही जरूरी है।
1: साथ ही ममता जी आज एक और खास दिन है, विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है और 2026 में ये दिवस 8 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को आंखों की देखभाल, दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार के प्रति जागरूक करना है
0: क्योंकि आंखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। दुनिया को देखना, पढ़ना, लिखना, काम करना, सीखना सब कुछ आंखों से ही तो होता है, लेकिन आंखों की जब अनदेखी करते हैं तो फिर आंखें आपको परेशान कर सकती है। बढ़ता स्क्रीन टाइम और डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियां भी आंखों को प्रभावित करती है। पोषण की कमी और नियमित आंखों की जांच न करवाने से भी दृष्टि संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है
1: और ये दिन हमें याद दिलाता है ममता जी की दृष्टि की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, समय पर जांच और उपचार से कई दृष्टि संबंधी समस्याओं को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है कि जैसे समय समय पर आंखों की चेकअप करवाना चाहिए। साथ ही मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल करने के बजाय बीच बीच में आंखों को आराम देना चाहिए
0: और पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए। ये जो बात आपने कही ना कि मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी का लगातार इस्तेमाल, इससे तो कोई बच नहीं पाता है और लगातार मोबाइल स्क्रीन के सामने लोग काम करते हैं। कुछ तो मजबूरियां भी होती है क्योंकि जॉब है ऐसी कि आपको लगातार 12-12 घंटे स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठना पड़ता है, लेकिन उसका उपाय है, डॉक्टर्स उपाय बताते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखिए, पलकों पर हाथ रख के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आंखें बंद करके, और या फिर पानी से थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को धोते रहिए। तो ये छोटी छोटी बातें नुस्खे हैं जिससे आप आंखों को आराम दे सकते हैं और धूप में जब जाएं तो जो काला चश्मा होता है वो लगाएं, उससे भी आंखों को सुरक्षा मिल जाती है। और आंखों में कोई समस्या हो तो बिना सलाह के दवा या आई ड्रॉप कतई ना ले।
1: नहीं तो ऐसा होता है कि घर में एक कॉमन रखा हुआ होता है सभी के फ्रिज में और बस लोग लेते हैं, डाल देते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सबकी आंखों के लिए अलग अलग आई ड्रॉप्स होते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो आप चिकित्सक से परामर्श लेके ही कोई दवाई आंख में डाले। और सबसे जरूरी बात है ममता जी, हरी सब्जियां फल दालें और पोषक आहार को अपने भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। और जिनको डायबिटीज वगैरह है, जैसे उच्च रक्तचाप है या हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें नियमित आंखों की देखभाल जांच करवानी चाहिए। और ये कहते हैं कि आंखों की रोशनी केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन के रंगों को महसूस करने का जरिया है। अपनी सेहत के साथ अपनी आंखों को भी प्राथमिकता देना चाहिए और दूसरों को भी दृष्टि की सुरक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए। और मरणोपरांत आप आई डोनेट कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, कहा जाता है ना किसी के दिल में उतरना है तो आंखों के जरिए। आप आंखें, आंखों से आंखों में बातें होती हैं। और तमाम गीतकार शायर ने आंखों पर शायरी की है, जिसे लिखी है एक गीत ये, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, गुनगुनाई है मदन मोहन ने, और लता मंगेशकर की

0: ममता जी हमारे बहुत सारे साथी नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक हमारे साथी लिखते हैं कि ममता जी के नाना से सुनी मुलाकात हमें बहुत भाई थी।
1: क्या बात है शुक्रिया। तो फिर जिन्होंने नहीं सुनी है ये बातचीत आज शाम को 5:30 तक सुन सकते हैं। और अब देखिए ना बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही जो हम शामिल करेंगे। और मेरे मोबाइल में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे श्रोता नाना पाटेकर को लिख रहे हैं विनम्र विनम्र विनम्र श्रद्धांजलि। दरअसल वो ऐसे अभिनेता थे कि वो गए तो नहीं है, हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। जब जब उनकी फिल्में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जिंदा इंसान हमारे सामने है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समाज सुधारक की जिनका नाम चुटनी महतो है और कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को हम दे रहे हैं। चुटनी महतो झारखंड के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका जीवन अंधविश्वास और जो डायन भूत पिशाच जैसी कुरीतियां हैं ना, जिस तरह की बातें होती हैं, इनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और बाकायदा मोर्चा निकाला। इसको इस तरह की कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, मुहिम चलाई।
0: जी, और ममता जी कभी वे स्वयं भी इस कुप्रथा का शिकार हुई थी। चिटनी महतो ने बाद में अपने जीवन में उन महिलाओं की मदद और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें अंधविश्वास के कारण प्रताड़ित किया जाता था।
1: और सोनाली जी यहाँ एक बात और बता रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे घरों में आज भी ये सब देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्तता किसी

0: जहाँ पर इस तरह के भूत पिशाच से दूर हो जाने की मूल
1: कहा
0: जनक
1: जाता
0: है।
1: है जी।
0: तो दरअसल समस्या क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतना एडवांस हो चुका है मेडिकल साइंस अपना, कि अगर कोई समस्या है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका निराकरण किया जाए,
1: जी
0: न कि भूत पिशाच के
1: जी
0: जरिए।
1: अंधविश्वास को दूर भगाना है। और छुटनी में तो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोलाडीह क्षेत्र से जुड़ी है। उनका विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था। कुछ वर्षों तक उनका पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन 1995 में परिवार के एक बच्चे के बीमार पड़ने के बाद एक व्यक्ति ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया, और इसके बाद उनके जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ।
0: 1995 की वो घटना जिसने जीवन बदल दिया। गांव में अंधविश्वास इतना ज्यादा गहरा था कि छुटनी महतो को डायन कहकर सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। उन्हें अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा, तो और उनकी संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई इसी वजह से कि वो डायन है। और बाद में उन्हें अपने बच्चों के साथ गाँव छोड़कर जाना पड़ा आखिरकार।
1: ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन ये घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनी। गांव से निकलने के बाद छुटनी महतो की मुलाकात एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से हुई जो इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कानून, प्रशासन और जागरूकता के माध्यम से इस कुप्रथा का मुकाबला करना उन्हें सिखाया। 1990 के दशक के मध्य से ही उन्होंने ऐसी महिलाओं की पहचान करने और उनकी मदद करने का काम शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस यानी आशा नामक संस्था के साथ मिलकर काम किया। वे प्रभावित महिलाओं तक पहुंचती, उनके मामलों की जानकारी जुटाती और जरूरत पड़ने पर पुलिस तथा प्रशासन की सहायता से उन्हें सुरक्षा दिलाने का प्रयास करती। छुटनी महतो ने केवल पीड़ित महिलाओं की मदद ही नहीं की, बल्कि गांव गांव जाकर लोगों को समझाया कि बीमारी, प्राकृतिक घटनाओं या पारिवारिक परेशानियों को जादू टोने से जोड़ना गलत है। उन्होंने महिलाओं को यह भी संदेश दिया कि अंधविश्वास के सामने चुप रहना समाधान नहीं है, ठीक नहीं होता। शिक्षा, कानून और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का मुकाबला भी करना चाहिए। और उनके अथक प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सैकड़ों से अधिक महिलाओं की मदद की है। और छुटनी महतो पुनर्वास केंद्र से भी जुड़ी रही, जहां ऐसी महिलाओं को सहायता मिलती है जिन्हें डायन बताकर समाज से अलग कर दिया गया था। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं की टीम भी विभिन्न गाँवों में ऐसे मामलों पर नजर रखती है और सूचना मिलने पर सहायता के लिए पहुंचती है।
0: और उनकी कोशिश केवल किसी एक पीड़ित महिला की समस्या हल करना नहीं था, बल्कि समाज की सोच को बदलना था। छुटनी महतो के लंबे सामाजिक संघर्ष और समाज सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। दिन था 25 जनवरी 2021 जब उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में झारखंड से उनका नाम शामिल किया गया। ये सम्मान उनके व्यक्तिगत संघर्ष के साथ साथ उन सभी महिलाओं के संघर्ष की भी पहचान बना जो अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है।
1: और छुटनी महतो का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अंधविश्वास का मुकाबला जागरूकता से किया जा सकता है। व्यक्तिगत पीड़ा को समाज की भलाई की शक्ति में बदला जा सकता है। महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है। और एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। छुटनी महतो की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। जिस कुप्रथा ने कभी उनके अपने जीवन को झकझोर दिया था, उसी के खिलाफ उन्होंने जीवन पर आवाज उठाने का फैसला किया।
0: और उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे समाज की बेहतरी का माध्यम बनाया। और उनका जीवन हमें भी तो सिखाता है, अंधविश्वास के अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटी सी जागरूकता की लौ भी काफी होती है। और छुटनी महतो उसी जागरूकता की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने मिसाल बनकर सामने आई है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं
1: जी।

I'm sorry.

विविध भारती से शिक्षा और सखा सुन रहे कार्यक्रम सखी सहेली। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र, व्हाट इज एग्जैक्टली फोर प्लस वन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्यों बने, हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है, ये देखेंगे। सबसे पहला जो आता है जो प्लस वन,

0: شرط زندگی بود. به یک سوست جیوه شریفی سه راه دکھانی والے ویلنس گروه ڈاکٹر راج اشوک شکتی. تو آپ سونا گنٹا ہے بندی جینے کا سوچو تو وہ اچھے سے ہوگا. اٹھیں گے تو اوپر, اٹھ گئے تو بل کہیں گے بلگے اوپر. اسی لیے ڈاکٹر راج اشوک شکتی سے بات چیت میٹنی شو 10 اکتوبر دن میں 11 بجے صرف ویوت بھارتی پر. विविध भारती पर इस समय हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम सखी सहेली. ममता जी, एक सखी भी लिख रही है कि आपका कार्यक्रम ऐसा है कि छूटता ही नहीं. अभी सोने की इच्छा थी, कमरे में जाकर लाइट भी बंद करी, फिर मोबाइल पर चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए उंगली बढ़ाई. ना ना, अब तो रिटायर हुई, ऑफिस की भी बंदिश में खुरपी कैची और गाड़ने का सामान लेकर बाद में आई. गाना चल रहा है तेरी आंखों की सिवा दुनिया में क्या रखा
1: बात है. तो गार्डनिंग कीजिए, सोने के लिए रात है ना, सोने की क्या जरूरत है. थोड़ा सा आराम जरूरी है जी. तो लेकिन वो आराम सखी सहेली के समय तो मुलतवी कर सकती है
0: जी. एक हमारे साथी ने नेत्रदान के बारे में लिखी है, आंखों या चक्षुदान की बात निकली है. तब एक दुर्घटना याद आ गई. हमारी सोसाइटी के एक परिवार का इकलौता बेटा जो 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल के वार्षिक उत्सव में मंच सजाने के कार्य के दौरान ऊंचे टेबल से गिर जाने की वजह से मौके पर ही उनका मृत्यु हो गई. और उनके माता पिता ने इस दुख की घड़ी में भी देर न करते हुए

0: उनकी आंखों को दान करने का त्वरित निर्णय लिया, जिसके कारण आज उनका बेटा किसी दो व्यक्ति में अपनी आंखों के द्वारा जीवित है।
1: क्या बात है, नेत्रदान महादान कहा जाता है, तो इसमें चूकना नहीं चाहिए और ये शुभ काम जरूर करना चाहिए। और सोनाली जी, आपको याद होगा कि एक जमाना ऐसा था जब घरों में दिन की शुरुआत और अंत भी गीतों से होता था। हमें तो याद है बचपन में कि सुबह उठते ही रेडियो शुरू हो जाता था और रेडियो से सुबह सुबह भजन आया करते थे। हालांकि ये सिलसिला अभी भी जारी है और बहुत सारे घरों में ये होता है, सुबह के मंगल गीत, त्योहारों के गीत, विवाह गीत, रात को माँ की गोद में जो डोरी सुनाई देती थी, ये सब हमारे जीवन का सहज हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन कहीं कहीं अब जैसे गायब हो रही,
0: पीछे छूटती जा रही ना ये सब बातें। डोरी केवल बच्चों को सुनाने की धुन नहीं थी, बल्कि माँ के प्रेम, दादी नानी के अनुभव और परिवार की भावनाओं का संगीत था। और इसी तरह पारंपरिक गीत हमारी लोक संस्कृति के ऐसे धरोहर थे जिन्हें किताबों से नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर सीखा जाता।
1: बिल्कुल सही बात है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये सीखो, सीख कर हम पता चला कि मोबाइल में गाना और लोरी फिर उस अपने बच्चे को सुना रहे हैं, बल्कि सुन सुन के याद भी हो जाती थी, वो कोई लिखने की जरूरत।

0: तो आप सभी आज जो आधुनिक जीवन शैली है इसमें पारिवारिक संरचना ही ऐसी हो गई है कि इन गीतों की गूंज जैसे गायब हो रही है, पहले की तुलना में कम होती जा रही है। बहुत सारे लोकगीत हैं, लोरियां हैं ऐसी जिन्हें आज की पीढ़ी ने शायद सुना भी नहीं होगा। और बच्चे के रोने पर माँ का उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे गुनगुनाना, जैसे कि चंदा मामा अरे नदिया किनारे, फिर वो मतलब अपने जैसे उस बच्चे का नाम लेके, अपने बच्चे का नाम लेके इंसान जोड़े जाते थे, वो कहा किसी का नाम जोड़ दिया, तो ये होता था। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती थी, सहज निकलता था मुंह से। और लोरी के शब्द भी बड़े सरल होते थे, लेकिन उनमें भावनाओं की बड़ी गहराई होती थी। कभी माँ बच्चे के भविष्य के सुंदर सपने देखा करती थी उस समय, और कभी उसके लिए सुख समृद्धि की कामना भी करती थी, और कभी प्रकृति चांद सितारों और पक्षियों को अपनी लोरी का हिस्सा बना लेती थी। और बहुत सारी महिलाएं जिनमें गीत और कविता की प्रवृत्ति होती थी, उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनके भीतर एक कवि
1: छिपी हुई रची
0: भाई है जी। और दादी नानी की लोरियों में तो उनके अपने जीवन के अनुभव भी घुल जाते थे ममता जी। इसलिए लोरी बच्चे को नींद देने के साथ साथ परिवार की स्मृतियों को भी जीवित रखती थी। और फिर पारंपरिक गीत भी, हर अवसर पर पारंपरिक गीत गाए जाते थे। विवाह गीत शादी के अवसर पर महिलाएं मिलकर गाती थी, बन्ना बन्नी के गाने गाती थी। और तो कभी हम लोग तैयारी से आएंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे।
1: ढोलक चाहिए उसमें साथ में,
0: ठीक है? ढोलक की व्यवस्था कर ली, पारंपरिक गीत और इसी तरह से हम देखते हैं हमारे श्रोता क्या कहते हैं कि उनको ऐसा वाला प्रोग्राम चाहिए यानी
1: जी। और इन ममता जी, इन गीतों में हंसी मजाक, भावनाएं, रिश्तों की मिठास और बेटी की विदाई का डर भी दिखाई देता था।
0: बारिश के मौसम में झूले पड़ते थे, महिलाएं मिलकर सावन के गीत गाती थी, और कोई जो पटना हो गया पटोहा
1: जी,
0: तो उसको झूले को झुलाते थे। और इनमें प्रकृति प्रेम और मायके की यादों का सुंदर चित्रण भी मिलता था उन गीतों में
1: जी। और साथ ही घर में बच्चे के जन्म पर खुशी व्यक्त करने के लिए मंगल गीत गाए जाते थे, ये परिवार के सामने खुशी का प्रतीक होते थे। और त्योहारों के गीत में होली, दीपावली, तीज, गणगौर, नवरात्रि, अन्य पर्वों पर भी अलग अलग क्षेत्रों की अपनी लोकगीत परंपराएं भी रही है।
0: स्कूलों में लोकगीत और लोरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, बच्चों को स्थानीय भाषा और लोकगीतों से परिचित कराया जाता था, याद है?
1: बिल्कुल याद है।
0: और विवाह और त्योहारों में रिकॉर्डेड संगीत के साथ पारंपरिक गीतों को भी स्थान दिया जाता था।
1: और इन गीतों को भी अभी भी अगर स्थान मिले तो कितना अच्छा होगा ममता जी।
0: बिल्कुल अच्छा होगा मेरा। अभी हमारा तो ये कहना है कि ये जो गीत कम सुनने को मिलते हैं लोरी की शक्ल में, श्रोता इन्हें साथ

0: घर आना पड़ता है, घर के कामकाज, बच्चे लोरी गाने का टाइम ही नहीं, बच्चों के लिए लोरी गाने का टाइम ही नहीं है। देश विदेश में रहने के कारण या दूसरे शहरों में रहने के कारण दादी नानी भी पास नहीं रहती हैं। भाई यहाँ हम ये कहेंगे कि इधर महिलाओं की नौकरी तो वो आजीविका के कारण करती है, मजबूरी,
1: जी
0: और करना भी चाहिए। तो लेकिन पिता है घर में तो पिता को सुनाना चाहिए,
1: हाँ,
0: दादा दादी है भाई
1: सिर्फ
0: बहन
1: माँ
0: को,
1: की जिम्मेदारी नहीं है।
0: बिल्कुल जो घर में है उसे सुनाना चाहिए। और मान लीजिए कि दादी दादी को नानी को बहुत सारी लोरियां याद है, तो अब तो फोन का जमाना है, फोन पर वीडियो कॉल करके भी सुना
1: सुना
0: सकते हैं।
1: सकते हैं। एक हमारी सखी ने लिखा है कि लोरियों से अपना बचपन और अपने बच्चों का बचपन याद आ गया, और साथ ही कहती थी कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले, आवा बबुआ के मुंह में घुटुक, ए चंदा मामा आ रहा हो। एक सखी ने लिखकर
0: बिल्कुल।
1: भेजा।
0: और जब घुटुक जिसपे दूध पिलाने के नाम पर माए बच्चे को करते हैं घुटुक, अपने बच्चे का नाम लेगा, तो कई बच्चे मुंह पर हाथ लगा लेते हैं कि नहीं घुटुक
1: अभी
0: नहीं
1: दूध पिलाएंगे।
0: घुटुक नहीं बोलो बस, बाकी लोरी सुना, ये भी होता है ना।
1: एक साथी कहते कि हमारे यहाँ बेटा आने पर जो मंगल गीत गाया जाता है उन्हें हमारे यहाँ सोहर गीत कहा जाता है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि लोरियां विलुप्त हो गई हैं लेकिन पारंपरिक गीत तो अभी भी बरकरार हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो शादी ब्याह नामकरण कुआं पूजन वगैरह, उसमें आज भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जिनके बिना आयोजनों में आनंद नहीं आता। ये पारंपरिक गीत अपनी लोकल भाषाओं में गाए जाते हैं जिनको सुनना एक अलग ही एहसास कराया जाता है। भाई अभी तो जब शादी ब्याह होते हैं तो बहुत सारे रस्म होते हैं कई दिन, और उसमें छोटे छोटे रस्मों की मंदिर जाती हैं महिलाएं,
1: कुआ पूजन,
0: हाँ, फिर वो मिट्टी की मिट्टी मिलती है तो मिट्टी पूजन करती है, वहाँ एक लोकगीत होता है, फिर वो एक मतलब सात महिलाएं एक बर्तन को पकड़ती हैं जिसे क्या बोलते हैं, सिकोहली बोलते हैं या फिर भोरी बोलते हैं, तो वो उठाती हैं तो उस समय एक गाना गाया जाता है, फिर वहां से निकलती है तब सड़क पर जब चलती है तब एक गाना, फिर दरवाजे पर आती है तो गाना, बहुत सारे गाने हैं। लेकिन हाँ, इन परंपराओं को, इन गीतों को आने वाली पीढ़ी को बताना, उन्हें
1: हमारी
0: एहसास देना,
1: जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल जी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा, ममता जी, लोरी एक शांत मधुर और सौम्य गीत होता है जिसे माँ या अभिभावक अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, शांत करने के लिए गाते हैं, पर आज आधुनिक जीवन शैली, एकल परिवार और डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण पारंपरिक लोरी और लोकगीत विलुप्त होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन और टीवी पर सिर्फ लोरी मिलती है आत्मीयता और प्यार नहीं, नई पीढ़ी का अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति से दूर होना भी तो इन मौखिक परंपराओं के लुप्त होने का मुख्य कारण है।
0: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि दुनिया बदली सो बदली, मगर ताज्जुब है कि अब शायद ही कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुनाती हो। माँ और बच्चे के रिश्ते में पालना और लोरी का अटूट संबंध रहा है। लोरी की दुनिया दरअसल सपनों की दुनिया है। माँ की लोरी में ऐसे हसीन और सुहाने वादे होते हैं कि माँ के चेहरे पर आते भाव से रीझ कर हर बच्चे के चेहरे पर पहले मुस्कान और फिर आंखों में नींद आ जाती है, और नींद में सपने होते हैं, तब शायद सपनों में माँ भी होती है। हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसी लोरियां हैं जिनको सुनकर कानों में आज भी मिठास घुल जाती है।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि लोरी बच्चे के लिए भाषा का पहला परिचय और पहला संगीत हुआ करती थी। माँ की थपकियों की लहर, उसकी धीमी आवाज में बहता वात्सल्य बच्चे को न केवल गहरी नींद में ले जाता था बल्कि उसे मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव भी कराता था। लोरी माँ और शिशु के बीच एक अनूठा संवाद थी जिसमें लोक कहानियां, प्रकृति और पारिवारिक रिश्ते ताने बुने की तरह, ताने बाने की तरह बुने होते थे।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आपके विचार से लगता है कि ये तो मेरी ही बात है, समय मिलने पर ही मैं अपने शिष्य से बातें करती थी, सुलाते समय लोरियां तो जरूर, स्वरचित लोरियां भी बेटा सुनता है, रूप कथा कहानी सुनकर वो बड़ा हुआ है, मेरी स्वरचित कहानी भी सुना है, इससे बच्चों में कल्पनाशीलता तो बढ़ती ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप एक इसका एक तरीका और है कि आप कहानी सुनाने लगती है तो दो चार लाइन सुनाइए और फिर पूछिए बच्चे से फिर क्या हुआ,
1: हाँ, तो वो भी
0: हाँ,
1: उसमें शामिल होंगे उसमें।
0: बिल्कुल वो लाइन जोड़ेंगे कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था और वो जब दहाड़ता था तो बहुत सारे वहां जानवर डर के मारे दुबक जाते, फिर क्या हुआ, तो बच्चे वहां पर बताएंगे आपको, इससे उनकी कल्पनाशीलता का विस्तार होता है।
1: एक साथी ने कहा, चंदा मामा आ रे आवा, बारे आवा, नदिया किनारे आवा, भोजपुरी की सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोरी गीतों में से एक है। ये गाना बच्चों को सुलाने और उनका मन बहलाने के लिए पीढ़ियों से गाया जाता है। 50 साल पहले जिनका बचपन बीता होगा शायद ही कोई बच्चा इस लोरी के बिना सोया होगा।

0: ये वाली लोरी कितने श्रोताओं को याद है जरा बताइए, अगर याद है तो पूरा लिख डालिए विद्यार्थी के फेसबुक पेज पर, क्योंकि ये तो सुरक्षित रहता है, जब भी श्रोता चाहेंगे आपके इस कमेंट को पढ़ सकते हैं। और देखिए ना सोना लीजिए, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है इसके लोरी के लिए
1: जी।
0: कि एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे जहाँ बेटा होने पर मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर कहा जाता है, बेटा नहीं बल्कि बेटा बेटी, क्योंकि बेटी के पैदा होने पर भी अब सोहर गाए जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा ढोलक वाला प्रोग्राम तो अवश्य पसंद आएगा, देखिए आगे टिप्पणी, तो हम तैयार हैं।
1: हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ
0: अगली बार ढोलक लेके
1: ढोलक।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले आवा बबुआ के वहां में घुटूक। एक श्रोता ने लिखा है कि भैया आज तो हम उन दिनों को याद कर रहे हैं जब हम ये गाया करते थे और सुना करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि बेटा हो या बेटी हो सोहर खिलौना सभी के जन्मोत्सव छठी बरही में गाया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी बहुत माँ को देखा है बच्चों को लोरियां सुनाती है और आजकल तो अलेक्सा भी आ गई है, तो मेरा पोता छोटा था तो अलेक्सा पर हम लोग लोरी लगा देते थे और सुनता था। एक श्रोता ने लिखा है कि गुजराती लोरी है जो हमारे भाभी जी गाकर अपने बेटे को सुनाती थी, भाईलो मारो डायो पाटलो देसी नायो, पाटलो गयो कसी भाईलो मारो गयो हसी, लोरी सुनाती।
1: यानी कितनी मिठास है ना, जो भी भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें अलग ही मिठास होती है, फिर वो हमें भले ही समझ ना आए पर उसकी मिठास हमारे दिल तक पहुंच जाती है।
0: सोनाली जी अब देखिए आपको ढोलक की तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है ढोलक संगीत के साथ सभी सखियों सहेलियों के गाने के प्रोग्राम कीजिए ना, सृजन भारती में भी ऐसा प्रोग्राम हो आनंद आ जाएगा। तो चलिए अब तैयारी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो आ रही है
1: जी
0: उसे पढ़ दिया।
1: अब जैसे कहा एक श्रोता ने कहा कि हमारा बेटे के जन्म होने पर वो जो खास सोहर सोहर गाया जाता है, तो वे बेटे के जन्म पर भी गाना चाहिए, बेटे बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक साथी ने लिखा कि मेरे तो तीन बेटियां ही हैं, किसी भी भेदभाव की जरूरत ही नहीं थी, मैंने बहुत अच्छे से बेटियों को पालने की कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे भोजन एजुकेशन साफ सफाई अच्छा पहनना ओढ़ा सभी बहुत बेहतर करने की कोशिश की, एजुकेशन पर बहुत जोर दिया, जिसके कारण आज बड़ी बेटी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और एक कथक डांस स्कूल भी चला रही है और दूसरी बर्लिन में सीनियर साइंटिस्ट है, दूसरे के बेटों से बेहतर है, वो भी वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, क्या बात है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि ये पुरानी मान्यता गलत साबित हो चुकी है कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है, असलियत में बेटियां विवाह के बाद भी माता पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमलों के कारण काफी सुधार आया है, लोग बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं।
1: एक हमारे साथी ने कहा कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग क्यों हो जाती है, बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आती ही कई चिंताएं घेर लेती है, चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार, फिर खुद से पूछती हूँ कि जब प्यार दोनों से बराबर तो सोच में फर्क क्यों, शायद ये भेदभाव जानबूझ कर नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही सोच का असर है, अब कोशिश है कि दोनों को सिर्फ बराबर प्यार नहीं बराबर भरोसा भी दे सको, अब बेटियां इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो एरोप्लेन उड़ाने के साथ साथ के लिए बंदूक लेकर भी खड़ी है।
0: बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि हमने यानी कि मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं किया है, सबको बराबर कॉलेज स्कूल में शिक्षा दिलाई है, सबको उनकी रुचि के अनुसार हायर एजुकेशन कराया और बेटे अभी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं और बेटियां भी गवर्नमेंट जॉब में है, सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए बेटियों को पहले आत्मनिर्भर होने का पूरा मौका दिया है।
1: क्या बात है। एक सखी ने लिखा मेरे ससुराल में बेटियां बहुत कम है, मेरी बेटियों के होने पर बहुत खुशियां मनाई गई, मेरे सास ससुर नंद बहुत खुश हुए थे, कभी हमने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि इनकी तो बेटियां ही है, कितनी अच्छी उदाहरण है।
0: बिल्कुल। एक श्रोता की टिप्पणी ये लिखा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग हो जाती है, बेटी के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं
1: घेर लेती हैं। चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार हैं। फिर खुद से पूछती हूँ, जब प्यार दोनों से बराबर है तो सोच में फर्क क्यों? एक साथी ने लिखा है कि बेटे बेटे में भेदभाव ये क्यों होगा, जब लड़का लड़की सब बराबर है तो आजकल सभी क्षेत्र में दोनों बराबरी से अपनी भागीदारी देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या ढूंढ लेते हैं बेटे और बेटी में जो हमें भेदभाव सिखाए। मैं तो बेटा और बेटी दोनों की माँ हूँ, इसलिए मेरे लिए सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, किसी भी बच्चे के लिए भेदभाव नहीं होता। जितनी बेटी लाडली है उतना बेटा भी, दोनों को एक जैसी एजुकेशन दे रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि अगर बेटी बेटे में भेदभाव की बात करें तो आज के युग में भेदभाव रखने का प्रमाण कम होता जा रहा है, क्योंकि आज की बेटियां बेटों के समकक्ष हो गई हैं, जो नौकरी करते हुए पूरा घर पूरा परिवार संभाल रही है, इसलिए उसे नारायणी भी कहते हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये भेदभाव पुराने जमाने में जरूर था और माना जाता था कि केवल बेटा ही वंश आगे बढ़ा सकता है, जबकि बेटी को पराया धन माना जाता था। असल में पुराने जमाने में भी बेटियों को बाकायदा सक्षम बनाया जाता था। बहुत सारी महिलाएं वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अच्छा नाम इतिहास में दर्ज किया गया, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन भूल सकती है। तो ये समय है, हाँ ये जरूर है कि अब जो समय है इसमें बेटियों को भी बराबरी का मौका मिल रहा है। तो जो लोग जो जिन घरों में अभी भी भेदभाव है, मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम से चर्चा से वो भेदभाव करना छोड़ देंगे।
1: और अब गीत सुनिए,
0: सुनते हैं ये गाना।

0: यह वक्तुरा है कुछ है ना।
1: एक सखी ने लिखा है कि लोरी और पारंपरिक गीत के विषय में सखी सहेली में चार चांद लगा दिए।
0: क्या बात है, आपकी टिप्पणियों में चार चांद लगा दिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोली बतिया या गाना सुनवाए, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: Thank you.

0: प्रकाश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत जब आपकी पसंद का हो तो गीत और भी खास हो जाता है ना? तो आइए आज के इस फरमाइशी सफर में शामिल होते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद के गीत, आपकी प्यारी बातें और साथ ही हमारे एहसास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ही कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: बात कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रहीम जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हो, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं देखिए, और हेलो फरमाइश के जरिए और भी अच्छे हो जाते हैं आप सभी श्रोताओं से बात करके।
1: आपका हमारा मनोरंजन तो इतना बढ़िया, इतना भारू आता हो विविध भारती, आपका मजा आता है जब चलता हो तो ऐसा लगता नहीं
0: मौसम हो और घर में बनाने के लिए आप तैयार रहते हैं।

0: करने पड़ना चाहिए। हम हमारे सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरा रूप भगवान का माता पिता होते हैं, और माता पिता के साथ में रहना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा भविष्य।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी होगी और निश्चित रूप से आपने भी अपने माता पिता का ख्याल रखा होगा। जी बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं, आपकी पसंद करेगी।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, कहते हैं नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। मैं तेरी खुशबू हूँ आज, ये शबनम अब्बासी है मेरा नाम। दीदी
0: क्या बात है, क्या बात है, शबनम जी बोल रही है, आज ही हो?
1: जी जी दीदी। दीदी आज आपसे बहुत टाइम के बात हो रही है, मतलब लगभग एक साल हो चुका है मुझे कॉल करे हुए। दीदी जी दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्या करें दीदी, मतलब पार्लर में हम काम करते हैं तो थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता।
0: कोई बात नहीं, तो अपना काम पहले ही ना, काम ही तो पूजा है। आप अपना काम कर रही हैं, वो आपकी रोजी रोटी होगी।
1: दीदी आपकी आवाज जब बोलती है तो ये दिल करता है बस जल्दी से दीदी से बात हो जाए।
0: आवाज तो आपकी

0: या गर्म लोगे तो हमें यहाँ पे पास भी जरूर आते हैं दीदी।
1: क्या बात है, जब आप प्यार दोगे तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्यार बांटने से आपको सम्मान और प्यार वापस मिलता है ना।
0: यार बहुत बड़ा हो ये छोटा हो, जब हम प्यार देंगे तो प्यार लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
0: ये फिल्म का नाम रहेगा दिल पे आशिक, उसका टाइटल यू है, यही सुनवा देना दीदी।
1: आइए सुनते हैं ये बड़ा मस्ती भरा गीत।

0: जी नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हम राजेंद्र जंगवार कपूरथला तहसील नवाबगंज छोटा सुशील बरेली उत्तर प्रदेश को आपको वार्तालाप कर रहे हैं। मैम
0: जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: मैम जी हम तो बस अभी तो ड्यूटी चल रही है हमारी।
0: ड्यूटी चल रही है कहाँ?
1: जो लाइफ बनते हैं, हाँ गाड़ियों

0: अच्छा, क्या टाइमिंग्स रहती हैं आपकी ड्यूटी की?
1: ड्यूटी तो खैर इसमें तो अभी तो चालू होने में बता रहे हैं कि इस महीने बाद चालू हो जाएगा। अभी तो हम अकेले ही हैं, 22-24 घंटे रहना पड़ता है मैम जी।
0: बहुत कठिन काम है ये तो, फिर परिवार के साथ समय बिता पाते हैं?
1: नहीं मैम जी, हम अकेले हैं, परिवार तो हमारा अंत है।
0: तो दैनिक दिनचर्या क्या रहती है आपकी?
1: दैनिक दिनचर्या यही रहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टहलते हैं, टहलने में और काम भी करते रहते हैं मैम जी।
0: और अपने स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या का कितना ख्याल रखते हैं?
1: बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि अगर जैसे अभी मौसम परिवर्तन

0: है बोल दे बाजे को आपकी
1: सुनिए।
0: जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की बात है। क्यों मुस्कुरा के जी ले आज को, उसका कल भी उसके साथ है।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद करेगी।

0: ये फरमाइश कर रही थी विवेक भारती से।
1: आपका जिला श्रोता नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी।
0: नाम क्या है आपका?
1: बालाजी गोमखले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। नांदेड़ से हमारा गांव 60 किलोमीटर है।
0: अच्छा, नांदेड़ से 60 किलोमीटर अंदर है आपका गाँव?
1: ग्रामीण का छेड़ा है।
0: क्या नाम है?
1: गुंडा गाँव।
0: अरे बड़ा सुंदर नाम है।
1: अभी नया तालुका है, नया गाँव, उसमें खंडा गाँव है।
0: अच्छा, तो बताइए आपके गांव के बारे में, कैसा है आपका गांव?
1: सब अभी सभी गांव सभी किसी के सुख दुख है, कोई सब कुछ दुख आया शादी के लिए, कुछ का अलग अलग दो अलग कार्यक्रम है, कुछ है तो सभी आदमी मिलकर करते हैं, कोई हाथ नहीं सुनते नहीं कोई नहीं। सभी अभी रिक्शन हो या कोई सा ही कारण हो, एक दिन में लोगों की सभी आदमी एक तरफ बैठ के सभी कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम बहुत अच्छा आदमी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो छोटे छोटे शहर हैं, एक गांव है, वहाँ पर आज भी ये मानवता जिंदा है, सब मिलकर रहते हैं।
1: जी आप लोग कार्यक्रम क्या वीडियो कार्यक्रम है और
0: वो भी अच्छा लगता है आपको?
1: सेहत माना का बात है ना, इसकी जानकारी मिलती है हर दवा के बारे में, हर ग्रामीण भाग में हर पैदा वस्तु वाले में डॉक्टर का उपचार क्या करना है क्या नहीं, सब सुख दुख के कारण सभी को मिला।
0: बहुत अच्छी बात करी, सेहत नामा में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। और उस डॉक्टर से हम ये भी कहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब आते हैं, कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग भी इसे सुन रहे हैं, तो कृपया उस बात को इस तरीके से समझाइए कि हमारी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण बच्चे भी उस बात को समझ पाए।
1: और इसके लिए जो महिला का जो सखी चल रहा है ना, हमारी महिला अगर सखी सखी मिलकर वो कार्यक्रम सुनते हैं, हरे सखी
0: सखी सहेली भी सुनते हैं। अरे वाह क्या बात है, हेलो सहेली सुनते हैं, है ना? बहुत अच्छा
1: जानकारी मिलती है हर आदमी की। हर वहाँ से फोन लगा कुछ में हमारे जो बहन रहते हैं उन्हें कहाँ से बात कर रहे हैं, चाहे सब मिलता है हमारे लेडीज को।
0: हाँ बिल्कुल मिलता है, खुराक मिलती है आपको, मानसिक खुराक देता है विविध भारती आपको, है ना?
1: वो भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल बोलते हैं भारतीय देश में दबा दी जाओ।
0: चलिए आपकी खुशी को महसूस कर रही हूँ, आप कितनी खुश है विविध भारती को सुन के। आप बताइए कौन सा गाना आपके लिए आज पेश करें?
1: गोरार का धीरे धीरे बोल कोई।
0: सुनिए ये प्यारा सा गीत, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले।

0: ना फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती?
1: जी नहीं दीदी, हम ग्राम चिराग कंगर डेरे से बात कर रहा हूँ मैं, देवा जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: संतोष जी हाँ।
0: कैसे हैं आप, संतोष रखते हैं अपने जीवन में?
1: जी जी दीदी, आप लोगों का शुक्र है इसमें, बिल्कुल संतोषी है।
0: बस यही होना चाहिए ताकि जो है जीवन अच्छे से चले। क्या करते हैं आप संतोष जी, बताइए?
1: खेती गृहस्थी करते हैं दीदी।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में, क्या बोया है?
1: जी दीदी, सोयाबीन बोया था, अभी कटाई हुई है 4 दिन पहले।
0: और सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं?
1: नहीं, अब सोयाबीन की कटाई हो गई है, हम अब गेहूँ चना लहसुन प्याज की तैयारी करेंगे।
0: अच्छा, गेहूँ चना लहसुन प्याज की तैयारी करने वाले हैं, तो इसके लिए पहले की तैयारी क्या होती है? जब आपको लगता है कि अब तो हमें खेत में ये बीज डालने हैं, तो किस तरह तैयार करते हैं आप अपने आप को?
1: दीदी इसमें क्या होता है, पहले तो 2 से 3 बार खेत को हाँकना पड़ता है, उसके बाद में रोटर में एक मशीन है जो उसको मिट्टी को बिल्कुल एक में कर देती है, उसको ढाक के और फिर हम सरिया बना के चालिया और उसमें जैसे लहसुन बोना है तो उसको चौपाई होती है, प्याज की चौपाई होती है, और गेहूँ चना को डायरेक्ट मशीन से डाल देते हैं और उसमें पानी छोड़ के पैदावार करते हैं।
0: मौसम खेती बाड़ी के लिए
1: खुला है और हमारे इधर सूखा घोषित हो रहा है दीदी, करीब थोड़ा थोड़ा पानी मिल रहा था बरसात में, हमारे सोयाबीन पैदा हो गए और वो अभी से ही कमजोर कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: ऊपर वाला है, अभी पानी गिरा देता है तो बहुत फायदा हो जाएगा, वो हमारा बोरा जिला है उसमें बहुत पानी कम है।
0: अच्छा, पर हिम्मत नहीं हारनी है आपको, मन छोटा नहीं करना है। चलिए गाना बताइए कौन सा सुनेंगे?
1: बंटवारा फिल्म का है दीदी,
0: ये गाना मुझे इतना पसंद है, आपने तो मेरी पसंद का गाना ही कह दिया यार। चलिए आपके साथ मैं भी इस गाने को जरूर सुनूंगी, आपको आपके पसंद का गीत हम सुनवा देते हैं।

0: नमस्कार अंकिल।
1: नमस्कार, जम्मू कश्मीर सोना मार्ग से लतीफ अहमदरीना बोल रहा हूँ।
0: लतीफ जी, स्वागत है आपका। मौसम कैसा है बताइए।
1: यहाँ तो मौसम लगे बहुत गर्मी है, दिन में तो गर्मी रहता है, सुबह शाम ठंड रहता है।
0: तो ठंड कितनी
1: जी
0: रहती है? स्वेटर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना होता है या चलता है थोड़ा सा?
1: नहीं, वार्मर तो पहनना पड़ता है सुबह शाम, तो दिन में तो बहुत गर्मी रहता है, पसीना आ जाता है इतनी गर्मी।
0: दिन की गर्मी परेशान कर देती है। आप क्या करते हैं लतीफ जी?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या है आपके खेत में अभी?
1: आज तो सरसों का बुआई करते हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, और कुछ नहीं होता?
1: होता है तो फसल की कटाई खत्म हो चुकी है सितंबर के महीने में, धान और मक्के की।
0: अच्छा, खेत में ही रहते हैं नींबू
1: हाँ,
0: की।
1: नहीं बाकी बाकी काम कर लेते हैं ना, जैसे अखरोट का अभी गिरी का मौका है, अभी गिरी निकालते हैं, अखरोट में पैकिंग करते हैं, ऐसा ऐसा रहता है।
0: कैसे निकालते हैं अखरोट
1: हाँ,
0: की गिरी, थोड़ा बताएंगे हमें?
1: ये थोड़ा निकालते हैं ना अखरोट, पाते हैं उसमें तो 2 फाट गिरी निकालते हैं, वही निकालते हैं, फिर डब्बा में भरते हैं।
0: अच्छा, कोई मशीन होती है?
1: नहीं, हाथ से निकालते हैं
0: अरे
1: पत्थर पे तो। हाँ, पत्थर
0: अच्छा, कितने अखरोट को तोड़ लेते हैं?
1: बस ये लगभग 1 क्विंटल किसी को निकलता है, 1 क्विंटल किसी को निकल जाता है, 40-50 किलो ऐसा ऐसा रहता है।
0: तो एक बात बताइए, जैसे अखरोट को जब हम तोड़ते हैं, हल्का हल्का एक नट क्रैकर आता है, उससे हम दबाते हैं तो टूट जाता है ना? आप कह रहे हैं हाथ से करते हैं?
1: हाथ से वो तो हल्का हो, उसको उतना ये नहीं होता है छिलका, और पत्थर पे रखते हैं, फिर तो हथेली से दम मारते हैं, वो तो तोड़ जाता है, फिर उसमें गिरी निकालते हैं।
0: तो गीली चूड़ा भी नहीं होनी चाहिए निकालते समय, इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना?
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
0: बहुत मुश्किल काम है ये भी।
1: अब तो मशीन आया ना इसका, उससे भी तोड़ते हैं।
0: चलिए, बहुत
1: हाँ जी,
0: महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम करते हैं आप।
1: बहुत मुश्किल, मेहनत तो अब यही है, रोजगार
0: बिल्कुल,
1: मेहनत
0: ये
1: करनी पड़ती है।
0: आपने समय निकाल कर विविध भारती आप सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
1: हाँ, सही बात, सही बात, मैं दिल से सुनता हूँ, पिटारा ज्यादा सुनता हूँ, हेलो फरमाइश, चेतनामा प्रोग्राम बहुत पसंद भी करता हूँ, सारे प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम आते हैं और मैं सुनता रहता हूँ, आज की फनकार भी सुनता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत खूब। गाना बताइए जो हम आपको सुन रहे हैं, आपकी पसंद का।
1: उनका नाम है किंग अंकल, लता मंगेशकर की आवाज में हो, इन जहां की तुम्हारी आंखें।
0: तो बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, मिलके सुनते हैं।

0: उमेश कह रही थी।
1: नमस्ते नमस्ते, कौन जनाब बोल रही है?
2: जेलों की नगरी उदयपुर राजस्थान के मुकेश जी बोल रही हूँ।
1: क्या करते हैं मुकेश जी?
2: टू व्हीलर गाड़ी का हाँ के काम है।
1: तो क्या डिजाइन वाले बनाते हैं सीट कवर? आजकल तो कई तरह के डिजाइन आ गए हैं सीट कवर में, मोटर बाइक के
2: डिजाइन वाले बना देते हैं और ज्यादा प्लेन पसंद करते हैं।
1: प्लेन पसंद करते हैं?
2: हाँ।
1: अच्छा, कपड़े का या वो जो वेलवेट आता है उसका? एक
2: वो लेदर के आते हैं अलग से, वो सीट कवर बनते हैं, पानी वाले नहीं बनते। लेदर वाले भी बनते हैं, सीट कवर वेलवेट वाले भी बनते हैं।
1: ज्यादा कौन से प्रचलन में है?
2: ये सीट कवर ही जो नॉर्मल आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं।
1: अच्छा, पर एक बात बताइए मुकेश जी, जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसमें ये जो सीट कवर नायलॉन के होते थे, ये गर्मी के दिनों में तो हम बैठ ही नहीं पाते थे। जब बाहर आए ऑफिस से और हमने अपनी स्कूटी या मोटर बाइक स्टार्ट की तो इतनी गर्म सीट हो जाती थी कि कई बार पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था पहले उसे।
2: अभी तो एक नेट वाला कवर आ रहा है, जाली वाला, वो लगाते हैं गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में।
1: हाँ,
2: उस जाली वाला आता है जो वो थोड़ा ठंडक रहता है गर्मी होती।
1: ये पते की बात कही आपने, क्योंकि वो सीट कवर इतना गर्म हो जाता था कि उससे तो कई दिक्कतें आ जाती थी और आदमी ढंग से चला भी नहीं पाता था दुपहिया वाहन। तो ये बदलाव आ गए हैं और आप बनाते रहते हैं तरह तरह के। तो कितने बना लेते हैं एक दिन में सीट कवर?
2: ये मेरे दुकान है बड़ा के ऊपर, एक बड़ा जितने आए जितने, तो मैं थ्री व्हीलर का काम करता हूँ, तो हॉट वोट या सीट कवर ये भी बनाता हूँ।
1: तो फोर व्हीलर के जो सीट कवर बनते हैं या टू व्हीलर, इसमें कुछ अंतर होता है जो आप नहीं बना पाते हैं? या
2: सीटें बड़ी होती है, गाड़ी खड़े रखने की भी जगह होनी चाहिए। हमारी छोटी दुकान है, छोटी गाड़ी तो आराम से खड़ा रह जाता है, दो गाड़ी तीन गाड़ी और चार गाड़ी खड़ी रह जाती है आराम से।
1: सही कहा आपने। बताइए, आप तो उदयपुर में रहते हैं झीलों की नगरी में, कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे?
2: उदयपुर में फिल्म गाना है राजपूत का,
1: कौन सा?
2: मेरे सुन सुन आया या तो कौन मिला।
1: अरे वाह, ये उदयपुर में फिल्म आया था।
2: उदयपुर में राजस्थान किशोर कुमार।
1: चलिए सुनते हैं।

0: आने वाली छठ पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
1: अरे इतनी सारी शुभकामनाएं एक साथ दीदी कहाँ रखेंगे हम?
0: क्या बोलते कि खुशी में रखिएगा, बांटते रखेंगे।
1: जी जी जी बिल्कुल, आपको भी सभी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, पर्वों की। क्या करते हैं आप चंद्रमान जी?
0: मैं साउथ ईस्टर्न कोर्ट

0: कुछ अनुभव रहेगा, बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिशा मूर्ति हूँ, मैं लोगों के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है शरण तेरी कसम और गीत के बोल है खींच मेरी फोटो, और गायिका है नितिन मोहन, दर्शन रावल और अन्य गायक है।
1: तो आप सुनिएगा, फिल्म पसंद करिए।

0: सुरेश कह रही थी हूँ।
1: हाँ नमस्ते दी,
0: नमस्ते।
1: शैल नगर से बात कर रहा हूँ, लक्ष्मी हरदास चांदवले। टीपू जो गाना देने का राजा राम चित्रपट का, तो पहली पहचान करने वाली अपनी गुरु होती है माता जी, उसके बाद पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद शिक्षक होते हैं, शिक्षक के बाद जो अपने को आदत में वाला जो गुरु मिलता है उसको हम

0: से जो आपने आंख को जो मोती बिंदु की पट्टी रहती वो निकलने वाला गुरु मंत्र जिंदगी में, तो वो सो रहती है माँ, सब सुख दुख झेल के सब काम करके अपने को छोटे से बड़ा करती। तो आप लोग सबका कर्ज अदा कर सकते, माँ का दूध का कर्ज जिंदगी में कभी अदा नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो।
0: हमारे माँ से पिताजी से जो संस्कार आए हैं वो हमारे माता जी पिताजी को कभी नहीं भूले।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने मच्छिंद्र जी।
0: अभी मेरा वीर भारती का दुकान में कार्यक्रम चालू है, मेरा टेलर काम का बिजनेस है, तो मैं ये बिजनेस कर रहे 50 साल
1: ऐसी
0: चौथी नहीं से था तब तो आज तक लेके हम वीर भारती बचपन से सुन के बड़े होते आए हैं। और आप जो लोग जो कार्यक्रम करते हैं एक से एक तक का सही सब कार्यक्रम, हमारा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम त्रिवेणी टीपू जो गाना देने का राजा राम चित्रपट का,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे सुनते हैं आपकी पसंद की।

0: फरमाइश कर रही हूँ विविध भारती से।
1: मुंडाजी दीदी, सबसे पहले तो जबलपुर मध्य प्रदेश सरकार वाले से प्यार भरा नमस्कार।
0: किसका?
1: अभिषेक सिंह बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो दीदी, मैं सभी विविध भारती परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं जो स्थापना दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
0: चलिए, अच्छी बात है, हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या आपने स्थापना दिवस का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था 11 बजे

0: प्रोग्राम से बहुत ही अच्छा लगा, दिन भर बहुत ही आनंद आता रहा। हम तो दिन भर चालू करके लगातार सुन ही रहे थे। तो प्रस्तुति जी और जिन कलाकारों को बुलाया गया जो की बहुत ही काबिल तारीफ, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा परिवार को मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी ऐसी ही चीजें आती रहे, बहुत ही अच्छा लगता है।
1: आपने इसमें अपने विचार प्रकट किए थे, कुछ लिखा किसी विशेष के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है इस शिरकत के लिए?
0: सभी सभी प्रोग्राम में जितने भी लाइव चल रहे थे सभी में कमेंट और सभी ने किया हुआ। जिसे मैं नियमित शो का फेसबुक से भी जुड़ा रहता हूँ, हर प्रोग्राम हर पोस्ट पे आपको कमेंट मिलेगी।
1: हाँ, बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे लगभग जो कार्यक्रम है वो श्रोताओं को फेसबुक

0: तुम्हारे लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें संदेश भेजते रहे और हमारे इस खुशी में वो भी शामिल थे क्योंकि उन्हीं की है विविध भारती। बताइए अभिषेक जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: 1989 की पिक्चर है भ्रष्टाचार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया, आरएन बख्शी जी के बोल है और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने गीत को गाया है। तेरे नैनो मेरे नैनो से मीठी मीठी बातें करते हैं,
0: आइए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार 3 में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर है 0222867028800224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस की कुछ आसान सूत्र, व्हाट इज एग्जैक्टली फॉर पर्सनल ग्रोथ, ये फॉर्मूला क्यों बने, हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है, पहली बात करेंगे। और बिल्कुल सबसे पहला मृत जो होता है प्लस वन, चार भी अगर देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये फोर प्लस वन मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी में। ये एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु है डॉक्टर राज अशोक शेट्टी। तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से होगा, उठेंगे तो ऊपर, उठ गए तो बिल थैंक यू बोल के ऊपर। तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे ही लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी। रूप तेरा मस्त हुआ, जादू मेरा धीरा हुआ, रूप तेरा।

मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर

Johnny,

Chrissy swinging in. अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्ही ने तो कहा था बस एक को सौ तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को कभी किसी को।

यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है, वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसी। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को, उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में बना देता है मेरे समूचे अस्तित्व

प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राण वायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, कितना सुख।

0: दोस्तों, हमने एक ऐसा कलाकार खो दिया है जिन्होंने अभिनय की दुनिया में अपनी एक विशेष शैली गढ़ी थी। उनके बोले संवाद को दर्शक अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, वजूद, वनवास जैसी फिल्मों में उन्होंने सशक्त भूमिका निभाई। नाना पाटेकर का जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, ये उस आवाज का मौन हो जाना है जिनके संवाद सुनकर दर्शक ठहर जाते थे। उनका बेबाक अभिनय सिनेमा की दुनिया में दर्शकों में हमेशा हमेशा मौजूद रहेगा। विविध भारती के संग्रहालय में नाना पाटेकर से एक दिलचस्प बातचीत मौजूद है। नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि स्वरूप आज आपके लिए हम वो रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं नाना पाटेकर से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। कहाँ बीता आपका बचपन?
1: मेरा बचपन गांव में बीता, मेरे जंजरा में, पहली से सातवीं तक। फिर मुझे सुधारने के लिए माँ ने मौसी के पास भेजा, फिर मौसी के बच्चे बिगड़ जाएंगे इसलिए मौसी ने मुझे वापस अपने घर में भेजा।
0: जी, सुना है कि बहुत संकोची किस्म के थे बचपन में आप।
1: संकुचित तो नहीं था। अभी मैंने जैसे कहा ना कि मेरी मौसी ने उसके कई बच्चे बिगड़ जाए इसलिए मुझे वापस
0: जी,
1: अपने घर भेजा। मतलब आप सोच सकते हैं कितना संकोचित था मैं।
0: तो क्या आज भी आपको वो खेत खलिहान और पहाड़
1: हाँ, मैं
0: नदी
1: वैसे ही
0: आदि
1: जाता हूँ, वही रहता हूँ।
0: अच्छा
1: मैं बंबई में बहुत कम रहता हूँ। मैं भीड़ मुझे रास नहीं आती, तो मैं पुणे में मेरा एक छोटा सा फार्म है, वहाँ रहता हूँ मैं।
0: जी
1: सिंहगढ़ जो है खाई में है, बड़ा मजा आता है।
0: जी अच्छा, पढ़ाई की आपने, पढ़ाई के बाद रंगमंच और चित्रकारी पेंटिंग, तो तीनों का ये समन्वय कैसे एक साथ
1: बचपन
0: संभव?
1: से चित्रकारी और थिएटर, थिएटर में स्कूल में था तब से कर रहा था, चित्रकारी में स्कूल में था तब से कर रहा था। कॉलेज में मैं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में गया, फिर
0: जी
1: वहाँ से कमर्शियल आर्ट की डिग्री हासिल की, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया। लेकिन इसके साथ लगातार मैं थिएटर करता रहा, और फिर एक दिन नौकरी छोड़ दी और मैंने थिएटर करना ही शुरू कर दिया।
0: जी
1: और
0: तो
1: थिएटर के बाद मैं फिल्मों में आया, वो स्मिता पाटिल की वजह से। वो मुझे घसीट के लेके गई और उसकी वजह से मैंने फिल्मों में काम कर शुरू किया।
0: जी अच्छा, थिएटर का जिक्र आपने किया है, तो थिएटर किया आपने, बहुत सारे नाटक किए, अच्छे मशहूर नाटक किए। 80 के जमाने में आपने पुरुष नाटक किया था, जनम गर्वी का लिखा हुआ, तो एक बार दोबारा आपने कई सालों के बाद पुरुष नाटक किया
1: हिंदी में किया था
0: हिंदी
1: मैंने।
0: में, तो ये दोबारा जब स्टेज पर आए तो कैसा था अनुभव?
1: दोबारा मैंने इसलिए किया था, परदेश में शो करने थे और काफी पैसे कमाने थे उससे। उस पैसे से मैं कुछ मेरे जहन में जो चीजें थी वो मैं कर सका। लेकिन थिएटर में आविष्कार ग्रुप से जुड़ा हुआ था जब मैंने एक्सपेरिमेंटल थिएटर शुरू किया, अरविंद देशपांडे, सुलभा देशपांडे जी, और कमर्शियल थिएटर मैंने जब शुरू किया विजया मेहता जी के साथ, तो लगातार मैंने तीन नाटक किए उनके साथ, हमीदाबाई चिकोटी, महासागर और पुरुष। पुरुष में 16 साल तक करता रहा, 1860 शोज किए मैंने उसके, तो तकरीबन 105 शो मैं बरस में करता था। लेकिन जो मेरी जिंदगी का बहुत सा अहम जो वक्त था मैंने उस नाटक के लिए दिया। कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, अगर मैं 16 साल नहीं करता वो, तो 16 साल में 4 साल के बाद अगर मैं वो नाटक छोड़ देता तो शायद अगले 12 साल में और कुछ नाटक कर सकता था। लेकिन शायद उस सक्सेस में मैं इतना अटक गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं लगातार करता रहा। लेकिन मुझे लगता था कि अभी आज लगता है कि वो गलती हुई और मैं कोई प्लेस कर सकता था।
0: जी अच्छा, थिएटर से आप फिल्मों की ओर आए, तो फिल्मों की बात करने से पहले हमें एक गाना सुनिए, आपकी पसंद का।
1: हाँ, मुझे वो प्यासा का गाना बड़ा पसंद है, बिछड़े सभी बारी बारी।

0: हनी जाना चाहते हैं कि आज की आवाज मेरा ख्याल है आपकी पहली फिल्म
1: नहीं, मेरी पहली फिल्म थी मुजफ्फर अली की वमन
0: जी,
1: और उसमें मेरे काम के था स्मिता थी, फारूक शेख था, जलाल आगा था।
0: कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, वमन फिल्म का रोल कैसे मिला?
1: वो सही ब्रांच पे की वजह से, उसने मैं वो पाहिजे जाती जो विजय तेंदुलकर का प्ले कर रहा था, तो उसने सही ने रिकमेंड किया मुजफ्फर को कि ऐसा ऐसा बच्चा है, तो उस तरह मुझे वो रोल मिला और मैंने किया। बहुत हालांकि बहुत छोटा सा किरदार था, लेकिन अपने आप को स्क्रीन पे देख के मुझे लगा था कि यार क्या कमाल, ये सुंदरन में लगी थी फिल्म। मैंने सोचा मैं फिल्म देखने जाऊंगा तो लोग मुझे देखते रहेंगे, परेशान करेंगे। पूरे थिएटर में 13 लोग थे, ऊपर हम 6 थे, बालकनी में एक सातवां आदमी था हमारे अलावा, शायद बारिश बहुत हो रही थी इसलिए कोई थिएटर में आए थे, और नीचे कुछ 5-6 लोग थे, कुल मिला के 13 लोग थे। लेकिन मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख के इतना खुश हुआ था, निकलने के बाद मुझे लगा लोग मुझे पहचानेंगे, कुत्ते ने भी नहीं देखा मेरी तरफ। हालांकि फिल्म मुझे बिथरी, मुझे तो बकवास लगी थी, लेकिन उसको अवार्ड्स बहुत मिले। मुझे वो इंटरनेशनल अवार्ड्स किस वजह से मिलते मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सच कहो तो मुझे वो फिल्म उतनी रास नहीं आई थी, लेकिन शायद ऐसी ही फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते होंगे।
0: अच्छा, अंकुश आपकी बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही है।
1: हाँ, उसके बाद मैंने आज की आवाज की, और उसके बाद प्रेम चंद्रा ने मुझे अंकुश का रोल ऑफर किया। हालांकि अंकुश में उन्होंने पहले दूसरा रोल ऑफर किया था, ये मैंने जो रोल किया वो रविंद्र महाजनी करके हमारे मराठी के एक एक्टर थे, उनको पूछा था, लेकिन उन्होंने 25,000 रुपए मांगे तो वो उनके पास थे नहीं, तो फिर प्रेम चंद्रा ने मुझे पूछा तो मैंने ये रोल किया। लेकिन प्रेम चंद्रा का मेरी ये इस करियर में फिल्मों में आने में बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्होंने मुझे वो रोल नहीं दिया होता तो शायद ही मेरी थोड़ी सी जो पहचान है वो हो पाती, तो प्रेम चंद्रा का मैं आभारी हूँ उसने।
0: अच्छा, बात उन दिनों की चल रही है आपके शुरुआती दौर की, तो शुरुआती दौर का कोई गाना अपनी पसंद का सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: वो शुरुआती मुझे बस फिल्म का वो इतनी शक्ति हमें देना दाता मुझे बहुत पसंद है,
0: अंकुश
1: का
0: सुनते हैं।

0: अकेले ना आके मिलना है, तो अपने रोल के बारे में कुछ बताइए ना।
1: एक जो कहानी जो कहने जा रहे हैं, जो एक स्वाभाविक जो घट रहा है हमारे यहाँ हमारे देश में, हालांकि हर पूरे दुनिया में जो घट रहा है, उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं प्रकाश झा। एक बेहतरीन कुछ कहना चाहते हैं, बेहतरीन मतलब कोई फिल्म का कैसे सब्जेक्ट हो सकता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसको फिल्मी बगैर फिल्मी बना के उन्होंने जिस तरह से कहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस फिल्म का हिस्सा होने का मुझे मौका मिला।
0: प्रकाश झा बना रहे हैं, आपने जिक्र भी किया, तो प्रकाश झा के साथ किस तरह की आपकी ट्यूनिंग है शूटिंग के दौरान?
1: प्रकाश झा के साथ बेहतरीन ट्यूनिंग है, क्योंकि हमारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। आज भी वो मुझे खाना खिलाता है, मैं उसे खिलाता हूँ, एक दूसरे को गाली नहीं देते, तो मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने जितने पैसे तय किए थे वो सब दिए मुझे, मैंने भी लिए, और आज भी एक दूसरे के प्रति आदर है।
0: अच्छा, कोई यादगार घटना या अपहरण से जुड़ी कुछ बताना चाहेंगे?
1: यादगार मतलब इस फिल्म की वजह से मुझे प्रकाश ने, अजय देवगन नाम का एक बेहतरीन इंसान है, एक्टर के साथ खराब लोग जानते हैं, लेकिन एक बेहतरीन इंसान है, बड़ा नटखट है, बहुत मतलब हैरान करता है सेट पे सबको, लेकिन कमाल का इंसान है। मैं उसका आभारी हूँ प्रकाश का, कि वो उसकी वजह से अजय मुझे मिला।
0: किसी ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए?
1: अरे एक छोड़ यार भाई, इतनी घटना है, मतलब इतना परेशान करता था सबको, कभी किसको भंग खिला दे, कभी जवान लौटा खिला दे, कभी कुछ भी करता है, मालूम नहीं है यार, बड़ा परेशान करता बच्चा।
0: अच्छा, मैंने सुना है कि दोबारा आप निर्देशन की ओर आना चाह रहे हैं।
1: हाँ, बहुत सालों के बाद। एक जहर में कहानी थी, प्रकाश को मैंने ऐसे बैठे बैठे बोल दिया, तो उसने प्रकाश ने कहा क्यों मैं बनाता अपने बैनर के लिए, तो उनके बैनर के लिए मैं बना रहा हूँ। अब उसका नहीं रहा, मेरा भी रहा, मेरा हो गया उसका बैनर, तो उसके लिए बना रहा
0: हूँ। और कहार आपकी
1: पहली फिल्म की निर्देशित,
0: तो कहार के बारे में क्या यादें हैं कुछ बताइए ना।
1: प्रहार के बारे में, मैं जब भी प्रहार देखता, मेरा जो बच्चा है उसमें से छोटा सा, मेरे बचपन का रोल उसने किया है। मैं सच कहता हूँ, आज भी मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, मुझे वही बच्चा याद आता है, मेरे जो बड़ा हुआ वो मुझे मल्हार जो है मेरे जहन में ही उन्हें बैठता, मुझे वही बच्चा याद आ जाता है। तो प्रहार के साथ मेरी जुड़ी हुई जो बातें है वो मल्हार के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह से मैंने उससे काम करवाया था, वो बेचारा रोता था, उसको रुलाने के लिए मैंने क्या किया, आज भी वो मिलता भी है तो उसी तरह से मिलता है।
0: जी, कैसे करते थे, कैसे रोल कैसे करवाते?
1: यार रो नहीं रहा था तो दो चाटे लगा दिए मैंने रोल, और वो इतना
0: दुख नहीं लगता था,
1: हमने क्या करें, लेकिन वो शॉट चाहिए था, और बाद में मैंने उसको गले लगाया तो मुझे ढकेल रहा था, कहता कि नहीं मुझे गले लग रहा, तुमने मारा मुझे सबके सामने मारा, और भीड़ के बीच में मैंने उसके साथ वैसे बर्ताव किया था। खैर, काफी अच्छी यादें हैं।
0: अच्छा।

0: जब हमारी अखबार होती है तब हम बड़े नारेबाजी करते हैं, जैसे वो खत्म हो जाता है हम उनको भूल जाते हैं, उनकी कुर्बानी भूल जाते हैं। तो उस वजह से वो जहन में था। उसके बाद मैंने मराठा लाइट इन्फेंट्री में स्पेशल परमिशन लेके काफी वक्त गुजारा वहाँ और पूरी स्क्रिप्ट लिखी और बाद में ये फिल्म बनाई थी।
1: अच्छा, ये बहुचर्चित बहु प्रशंसित फिल्म थी, लगभग 15 साल हो गए, हमने सोचा था कि आप और फिल्में डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच आपकी फिल्में आई नहीं, क्या वजह थी?
0: नहीं, वजह ये थी कि बीच में जब मैं वैसे बहुत ही साधारण घर से था, उतने पैसे थे नहीं मेरे पास, ये फिल्म करने के बाद काफी ऑफर्स आई तो पैसे बटोरने में मैं मशगूल हो गया, हालांकि ये गलत था। और अपना एक घर हो, छोटा सा क्यों ना हो, उस घर के लिए, फिर आदमी हूँ, इंसान हूँ, तो फिर वो लालच बढ़ जाती है, फिर ये थोड़ा सा ये भी चाहिए, फिर थोड़ा ये भी चाहिए, फिर थोड़ा ये भी चाहिए, और ये बढ़ता गया और जब मैं कर नहीं पाया, अब जाके ऐसे लगता है कि जिंदगी में जितना कुछ चाहिए था वो उससे बहुत कुछ ज्यादा ऊपर वाले ने दे दिया है। तो एक जहन में कहानी थी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक बार आप सोच लो कि मुझे इतना चाहिए और वहाँ अगर रुक जाओ ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हम उसमें इतने मजबूर हो जाते हैं बटोरने में।
1: अच्छा, फिल्मों में आप बड़े गुस्से नजर आते हैं और मुझे भी पूछते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है, तो इस जो असली जिंदगी है, असली शख्सियत क्या है नाना पाटेकर की?
0: नहीं, अब आपने मुझे देखा, आप पहली बार मुझे मिल रही है,
1: बहुत अच्छा लग रहा
0: है। तो आपको तो मालूम है मैं मेरे किरदारों की वजह से, अब किरदार ही ऐसे निभा है तो ये बिल्कुल जायज है कि आपको लगे कि नहीं मैं वैसे ही हूँ। अब अभी आप मिली है तो आपको शायद पता चला होगा कि मैं उतना डरावना नहीं हूँ जितना आपने सोचा था। लेकिन वो क्या, जैसे जो एक बार एक किरदार अगर लोगों को पसंद आ जाता है वो फिर उसी उसी तरह के किरदार में आपको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कैद कर देते हैं।
1: पर असल जिंदगी में नाना पाटेकर बड़े ही अच्छी है।
0: हाँ भाई, मैं भी हंसना चाहता हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, मैं भी सोता हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी हंसी आती है, मुझे भी दुख होता है।
1: अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कोई आपकी पसंद का गाना सुनते चलो।
0: वो एक जो दो आंखें भारत का सैया
1: सैया जूतों का बड़ा
0: सरदार
1: जी, सुनते हैं।

0: मैंने जैकी श्रॉफ के साथ आपकी कई फिल्में,
1: हाँ चार पांच फिल्में हैं,
0: हाँ परिंदा, अग्निसाक्षी, यू पुरुष भी,
1: यू पुरुष थी, फिर गैंग थी।
0: तो जैकी के लिए कुछ बताइए ना, कैसी ट्यूनिंग रही, कैसी दोस्ती?
1: जैकी बहुत अच्छा दोस्त है, बेहतरीन इंसान है, ऊपर से दिखाता है बहुत ही ऐसे है ना, बहुत बहुत बहुत ही सीधा सा बंदा है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरा दोस्त है
0: जी। तो कोई वाक्य बताइए ना दोस्ती का, कि लोगों को भी यकीन हो।
1: आज तक मिलते रहता है, आज तक गणपति में आता है, बीच में जभी जभी फोन करके पूछता है, माँ कैसी है, तू कैसा है, टाइम है क्या, चलाऊं क्या कैरम के लिए। वो पहले शशिलाल नायर, वो मैं काफी अंगार फिल्म जब हमने की थी, काफी खेला करते थे। वेरी नाइस सोल, वेरी नाइस सोल।
0: अच्छा, जैकी श्रॉफ के लिए कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: जैकी श्रॉफ के लिए

0: अच्छा डॉक्टर साहब के लिए और कुछ बताना चाहेंगे? कोई खास घटना, थोड़ी बहुत झूठ तकरार भी होती है?
1: नहीं, जति के साथ कभी तकरार हुई ही नहीं, उसके साथ तकरार नहीं हो सकती। ज्यादा हो, ज्यादा गुस्सा होगा, गए चले खत्म हो गया, उधर ही खत्म हो जाता है उसका।
0: अच्छा नाना, लोग आपकी डायलॉग डिलीवरी के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, और डायलॉग डिलीवरी के बड़े दीवाने हैं यू के, लेकिन आजकल फिल्मों में जैसे ज्यादातर फिल्मों के डायलॉग हिट नहीं होते हैं, हालांकि आपके फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है, तो आप कितनी मेहनत करते हैं इसके लिए?
1: मुझे नहीं मालूम, ये सभी कुछ निर्भर होता है कि वो फिल्म लिखते जो है, मेरा श्रेय उसमें 10% होगा, लेकिन जो लिखते हैं उस पर ज्यादा निर्भर करता है। लेकिन वो किरदार कौन सा है, किस तरह से आपको निभाना है, उस पर निर्भर है। हर जगह वो उस तरह से नहीं बोल सकते आप।
0: कोई खास तैयारी करनी पड़ती है आपको?
1: रटने तो पड़ते हैं।

0: अंदर डालने पड़ते हैं, सिर्फ रखने नहीं, अगर नाभि तक जाए तो वहां से वो आते हैं तब गले से उतरते हैं तो वो झूठ लगते हैं, अंदर से आते तो आप वो खांसते भी है तो भी अच्छा लगता है, आवाज आपकी श्रील हो जाती है तो भी अच्छा लगता है, फटती है तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि नहीं वो अंदर से जहन से बोल रहा है तो बहुत आसान हो जाता है।
1: क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन से डायलॉग्स आपको बहुत पसंद है आपकी फिल्मों के?
0: नहीं, मुझे याद ही नहीं, उस वक्त याद रहता है क्योंकि वो उस प्रसंग से निगड़ित रहते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो उस वक्त उसका इम्पैक्ट सही होता है। अभी आइसोलेशन में अभी ऐसे बोलूं मैं अलग से तो उसका मजा नहीं है।
1: संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में आपने
0: उसके डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, मैंने
1: बताना चाहेंगे?
0: याद कीजिए उसके कौन से है, बोल ही नहीं सकते बोलने का रोल उसके बाद
1: किस तरह की मेहनत आपको करनी पड़ी
0: था? संजय ने एक जो बच्ची थी उनको सिखाने के लिए एक खुद वैसी थी, उसका बच्चा जो मेरे बच्चे का रोल किया था वो उस संगीता का लड़का था उसमें जी। तो वो हमें पढ़ाती थी सिखाती थी और उसके बदौलत मैं जो कुछ कर पाया, लेकिन वो संजय ने उसका सब जिम्मा लिया था। संजय बहुत मतलब करता है जब तो पूरा उसने अपने आप को पूरा डाल के वो करने की संजय की
1: अच्छा खामोशी की चर्चा हो रही, खामोशी का जिक्र हुआ तो उसी फिल्म का गाना सुनाना चाहेंगे?
0: हाँ जी, मैं

0: सर्विस ऐप विजिट कीजिए, डाउनलोड सर्विस आरती ऐप। सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या फिर स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
1: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
0: आपका साइबर रक्षक। पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
1: और हमेशा हमारी फिक्र करना, वैसे उनकी जमा पूंजी बैंक में भी है
0: और क्लेम करना मुश्किल होगा।
1: और भी आसान हो गया है, बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जा, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
0: RBI कहता है
1: जानकार बनी सपोर्ट रहिए।
0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या फिर स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
1: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
0: आपका साइबर रक्षक।

0: वागिस को नंग बाते अगर रहा अर बिजोल ने गारीरा रिन्यूएबल एनर्जी अरो इंजीनियर को मचापे या आबार हो ताकि यानी ट्रेनिंग ना इंडस्ट्री रंग बक्सा बकरम चीना पॉलिटेक्निक रंग को मोरंग हा छात्र छात्री रंग को नम दाबनो स्किल पर अरो वी असि पर बकरम माने को अपाल पता चीना वा अगर रहा रिशु बिल फारा बाजिंग डोबा आदोक्री अरुका कुटा सीनियर डी ब्लॉक रंग अक्टूबर बुक थारी कोनी स्कूट थारी कोना मेघालय राइट टू पब्लिक सर्विस एक हजार को ग्रेट नी बिटिंग नोर कारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम को बनाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ओसा मापी लिंगो ने दिलानीचे सेशन में क्लास स्कूल ओनी चिगनी हो पर एक बार छात्र छात्री रंग बाको रहेगा मंदिर वाला खदुकी ओनिंग बा मंदिर वाला दंगदुकी ओनिंग बा खामरानी कमेंट व्याप्त के परा कोमत सोना बल दुमा को सुबंग के पासकान चीन एक और ना अने वा आगं थला तंगा हा दाल चुरानी पी ए थोगन संगला ट्रेक आरफिल ग्रामो हॉकी निगलिया डिजिटाइज टेलन आईडी प्रोग्राम ने पेस बुमा ओ दम बुमा डिस्ट्रिक्ट रंग ने सक्रिय गतन में बते चदम बिरंग बाखोर आंगा हा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स टेली बक्सा मेघालय स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ सनंग रमे प्रोग्राम को लाता हा कोबरंग को प्रतिनि सुमई बाई अनु बोना हा खनतम सुइंग के पा सकाटीना रुवाना या आकाशवाणी शिलोंग गारो प्रोग्राम
1: आकाशवाणी छुरा आज खबरों को शिलोंग स्टेशन ने को नशमांक ना सुना मत हा दा समय दो बजे मिनी चिमो वहा अरिया समय प्रिंसिपल मरक आरोनी दोलनी इसोलर मतलब गीत रंग को नशमांग दो कोला चुनक ना सुना मन गेन और वा गीत रंग ओंगिंगा वियानियो दालरो रोबो अमान रखा बुदू आरो जिशियोना थांगबो

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
0: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशनों की सुनिश्चित
1: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
0: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र ले जाए
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराए
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को पेंशन से सुरक्षित उनका
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनित में जारी
3: किसान वाणी कार्यक्रम में किसान भाई बहनों हमारा नमस्कार। खेत में बोया गया हर बीज सिर्फ फसल नहीं होता उसमें किसान की मेहनत उम्मीद और पूरे परिवार का भविष्य जुड़ा होता है। मौसम का बदलता मिजाज हो फसल में आने वाली कोई समस्या हो नई तकनीक हो सरकारी योजना की जानकारी हो या खेती की ऐसी सलाह जो आपकी लागत को कम करने उत्पादन को बढ़ाने और आमदनी को बेहतर करने में मदद कर सके क्योंकि आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं सही जानकारी सही तकनीक और सही समय पर सही फैसले से आगे बढ़ती है।
4: बिल्कुल बहुत सही कहा आपने कोमल क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की जो बड़ी आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। किसानों की खेती के दौरान सूखा बाढ़ ओलावृष्टि चक्रवात कीट एवं रोग जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसान भाइयों को करना पड़ता है और इस कारण फसल जो है वो नष्ट हो जाता है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए भारत सरकार की एक योजना है जिसपे हम बात करेंगे क्योंकि किसान भाइयों की आमदनी डिपेंड करती है उनके कृषि पे उनके होने वाले फसलों के उत्पादन पर। तो ऐसी एक योजना जो भारत सरकार द्वारा लाई गई है वो योजना है फसल बीमा योजना जिससे आप अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं बहुत ही कम प्रीमियम दे करके और अगर कोई प्राकृतिक आपदाओं के चलते आपका नुकसान होता है तो आपको जो है मुआवजा मिलता है और आप आर्थिक क्षति से बच सकते हैं।
3: तो आसान भाषा में इसे समझिए कि इस योजना के तहत पात्र किसानों को अधिसूचित फसलों को निर्धारित जोखिमों से होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमा सुरक्षा देने का प्रावधान है यानी प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में फसल को नुकसान होने पर योजना के नियमों के अनुसार किसान को आर्थिक सहायता मिल सकती है और सबसे खास बात किसान को पूरे बीमा प्रीमियम का बोझ खुद नहीं उठाना पड़ता। किसान के हिस्से का प्रीमियम निर्धारित होता है और बाकी प्रीमियम में सरकार की सहायता रहती है।
4: बिल्कुल और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है मुख्य उद्देश्य ये कह सकते हैं कि किसानों की आय को स्थिर करना और खेती में उनका विश्वास बढ़ाना आधुनिक कृषि तकनीकों को भी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और योजना की जो पात्रता है कोमल वो है इस योजना मतलब उन किसानों को मिल सकता है जो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगा रहे हों संबंधित मौसम के लिए योजना की शर्तों के अनुसार पात्र हों इसमें जो भूमिधारी किसान है उनके साथ बटाईदार या काश्तकार किसान भी शामिल हो सकते हैं बशर्ते हुए राज्य द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज और शर्तें पूरी करते हों। योजना के अंतर्गत फसल और क्षेत्र का अधिसूचित होना जरूरी है।
3: लेकिन गौतम सिर्फ योजना के बारे में जानकारी रखना ही काफी नहीं होता जरूरी होता है कि समय पर हमारे किसान भाई जो है वो उसके लिए आवेदन भी करें। किसान भाइयों आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अपने बैंक कृषि विभाग या अधिकृत माध्यम से जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और हाँ यह एक बहुत जरूरी बात भी आपको बताना जरूरी है कि अपनी फसल और अपने क्षेत्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आप जरूर पता कर लें।
4: बहुत सही कहा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। किसानों को इसकी पात्रता आवेदन प्रक्रिया और समय

0: की जानकारी प्राप्त करके समय पर अपनी फसल का बीमा कराना चाहिए और इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा जो है वो मिलती है और देश की कृषि व्यवस्था भी आर्थिक और सुदृढ़ होती है।
1: और मान लीजिए फसल का बीमा तो आपने करा लिया, लेकिन गलती से कोई प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल को नुकसान हो गया, तो किसान भाई नुकसान की सूचना देने में बिल्कुल भी देर ना करें। निर्धारित समय सीमा और प्रक्रिया के अनुसार अपने बैंक, बीमा कंपनी, कृषि विभाग या संबंधित अधिकृत माध्यम को सूचना दें और जरूरी प्रमाण और दस्तावेज संभाल कर रखें। खेती में हर जोखिम को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जोखिम के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसीलिए फसल को बोते समय सिर्फ उत्पाद का नहीं, फसल की सुरक्षा का भी ख्याल रखिए।
0: फसल में नुकसान होते ही सूचना दे दें, ये आपने बहुत सही बात बताई, और अपने बैंक, बीमा कंपनी, सीएससी या संबंधित जो कृषि विभाग है उसको भी सूचना आप दे सकते हैं।
1: आपकी फसल सिर्फ खेत में खड़ी फसल नहीं है, वो आपकी मेहनत, आपकी उम्मीद और आपके परिवार का भविष्य है। इसीलिए मेहनत के साथ सुरक्षा भी जरूरी है।
0: कुमल, हमने बात की अभी फसल बीमा योजना पे, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ हमारा जो आज का विषय है कार्यक्रम का, वो है धान की फसलों की कटाई और थ्रेसिंग में मशीनीकरण का उपयोग। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ भी आमंत्रित किए हैं। आज के जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर सतीश देवराम लांडे जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग पूसा नई दिल्ली में। तो आइए इनसे विस्तार में सुनते हैं कि धान की जो फसलों की कटाई और थ्रेसिंग में मशीनीकरण का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है।
1: डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: नमस्कार किसान भाइयों।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि किसान कैसे पहचाने कि उसकी जो धान की फसल है वो अब काटने के लिए तैयार हो चुकी है।
2: एक सबसे पहले, अगर मशीन से कटाई करनी है या हाथ से कटाई करनी है, तो हमें पहले जानना जरूरी होता है कि हमारी फसल तैयार है या नहीं है। तो आमतौर पर हम जैसे जानते हैं कि फसल हमारी जब पकनी शुरू होती है, मतलब पीली पड़ती है, तो लगभग हमारी जो बालियां है वो 80 से 85% तक अगर पीली हो जाती है, तो हमें समझ में आ जाता है किसान भाइयों को कि हमें कटाई की तरफ या उसमें कोई मशीन का इस्तेमाल करके उसके हार्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। तो एक बहुत अहम बात होती है जिससे हमारी जो फसल है उसकी गुणवत्ता निर्भर की जा सकती
1: जी। और कुछ किसान जो है वो एक दाना लेकर दांत में दबाकर भी चेक करते हैं,
2: चेक करते हैं उसमें कट से आवाज आए, तो क्योंकि कच्ची फसल या कच्चा दाना होना या ज्यादा पका होना भी सही नहीं होता है, जो हमारी गुणवत्ता है उस दाने की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि सालों से, सदियों से जो किसान है अपने हाथों से कटाई करते आ रहे हैं, पारंपरिक तरीके से कटाई करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से मशीनों का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो वो किसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, फसल के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, उसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं।
2: आज के समय में अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे किसान भाई खेती के कार्यों में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम खेती का काम हमारे किसान भाइयों खुद करते हैं तो इसमें बहुत श्रम की आवश्यकता पड़ती है, और जब हम किसी आधुनिक मशीन या कोई भी यंत्र का इस्तेमाल करने का उसमें सोचते हैं तो श्रम तो कम होता है, साथ में समय की बचत होती है, और जो मैं एक शुरुआत में बात कहा कि जो हमारे फसल की एक गुणवत्ता है
1: जी,
2: उसे भी हम बहुत अच्छी तरीके से मशीन के द्वारा रख सकते हैं, और सही समय पर जो खेत में जो हमारा सोना उगा है उसको हम भंडारण की तरफ ले जा सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते
1: हैं। तो
2: हैं
1: अगर हम कटाई के लिए बात करें तो ऐसी कौन कौन सी मशीनें हैं जो आजकल किसानों के लिए उपलब्ध है, और खास तौर से छोटे और बड़े दोनों किसान मतलब अलग अलग तरीके से उन्हें इस्तेमाल कर सके, क्योंकि छोटे किसान जो है वो ज्यादा बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसी कुछ मशीनों के बारे में बताएं।
2: देखिए, धान की कटाई आमतौर पे हमारे देश में अगर बात करें तो बरादी का इस्तेमाल करके हाथ से कटाई की जाती है, लेकिन आज के समय में कुछ हस्तचालित यंत्र भी आए हैं
1: जी,
2: और साथ साथ स्वयंचलित यंत्र भी है, इनका इस्तेमाल करके हम बहुत आसान तरीके से कटाई को कर सकते। धान की कटाई करते समय हमें कुछ चीजों का वैसे भी ध्यान रखना है, अगर हम किसी भी मशीन से इस्तेमाल करें तो कम से कम जमीन से लग के या कम से कम हाइट पे उसे काटने की कोशिश करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें पराली मिलती है, क्योंकि उसके भी और अन्य तरीके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी मात्रा में हमें हमारे जो ग्रेन से या हमारी धान है वो हमें मिल सकती है। तो एक तो यही बात है, जो मशीनों की बात करते हैं कि अगर हम बराती तो है ही है, लेकिन हस्तचलित ब्रश कटर्स भी आज के समय में मार्केट में है, उसमें पेट्रोल इंजन वाले भी हैं, छोटे से 1 HP 1.5 HP के इंजन लगे हुए भी, और कुछ बैटरी वाले भी कुछ मशीन है जिनके द्वारा हम उस ब्रश कटर का इस्तेमाल करके कुछ अटैचमेंट्स होते हैं उनको लगा के बड़े आसानी से हम छोटे किसान भाई भी हमारे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसी मशीनें हैं जिसे हम रीपर कहते हैं। एक रीपर बहुत अच्छी मशीन आई है मार्केट में और कम दाम में भी है और बहुत आसान तरीके से उसके हम चला सकते हैं। पीछे आदमी को हैंडल पकड़ के जो भी आपको धान की फसल काटना है वो काटती भी है, काट के एक साइड में उसे इकट्ठा करते हुए जाते हैं जिससे आसानी से आप बाद में उसे इकट्ठा कर सकते हैं और सुखा के अपने थ्रेशिंग की तरफ ले जा सकते हैं। आज के समय में रीपर में कुछ नई तकनीकें भी इजाद की गई है जैसे जो बंडल बांधती है तो उसे हम रीपर बाइंडर एक मशीन कहते हैं। बहुत सक्षम मशीन है, सब्सिडीज वगैरह भी इनपे उपलब्ध है जिनकी वजह से किसान भाई कम से कम उसमें लागत लगती है और बहुत आसान तरीके से कटाई भी होगी। एक साइड में उसे हम बंडल बांध के उसे छोड़ भी सकते हैं, बाद में हम इकट्ठा करके उसे थ्रेशिंग की तरफ ले जा सकते। ये ऐसे यंत्र है जैसे रीपर और स्वयंचलित या आपको अगर थोड़ा सा और अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो रीपर बाइंडर, इस तरीके की मशीन का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से आप धान की कटाई कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक मशीन होती है कंबाइंड हार्वेस्ट जो कि कटाई और थ्रेसिंग दोनों के ही काम करती है, तो इसके इस्तेमाल के क्या जो मुख्य फायदे हैं या किन परिस्थितियों में इनका जो इस्तेमाल करना है वो ज्यादा बेहतर रहता है हमारे किसानों के लिए?
2: बिल्कुल, अगर हम किसी चीज को हाथ से काटते हैं तो लगभग हमें 200 से 300 मैन आवर बोलते हैं, मतलब बहुत सारा श्रम या बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे हम इस तरीके के रीपर बाइंडर या रीपर की तरफ जाते हैं तो श्रम कम हो जाता है। लेकिन आज के समय में जब हमारी फसल तैयार होती है तो किसानों के पास भी और हमें फसल को बचाना भी है, क्योंकि आज के समय जो वातानुकूलित कुछ बदल हो रहे हैं जो हमारे इन सब को ध्यान में रखते हुए कभी भी बरसात का ऐसा मौसम भी तैयार हो जाता है तो कंबाइन हार्वेस्टर की तरफ हमें हमारे किसान भाई बढ़ चुके हैं। अब ये जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है ये कटाई भी करता है, उसको कन्वे करता है और थ्रेशिंग की तरफ ले जाता है और साथ में उसका थ्रेशिंग भी करता है। तो एक ही समय में हमें जो हमारी फसल है उसे हम निकाल के उसे अच्छे से थ्रेश करके, क्योंकि वो ये इफिशिएंट भी है बहुत अच्छी तरीके से, कम समय में और बहुत अच्छा एरिया कवर करके आप बड़े आसानी से थ्रेशिंग करके उसे धान को जमा कर।
1: अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि कंबाइन हार्वेस्ट जो है इतना उपयोगी है हमारे किसानों के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है मशीनों की सेटिंग बहुत जरूरी होती है, तो जैसे कटाई के लिए है या थ्रेशिंग के लिए है जो मशीनों की सेटिंग है वो कितना करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है हमारे किसानों के लिए जो कि उनको कोई किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो?
2: जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो आमतौर पर हम, क्योंकि चलाने वाला बहुत बार कंबाइन हार्वेस्टर जो है ये हम हायर करते हैं या एक एकड़ के हिसाब से प्रति घंटे के हिसाब से हम उसको लेते हैं, बहुत बार वो अपने हिसाब से चलाता है तो ऐसी ऑपरेशन की वजह से फसल सही से कटी नहीं जाती और सही से थ्रेश भी नहीं होती। अगर हमारी फसल बासमती है तो हमें कम से कम स्पीड में गति में उसे चलाना चाहिए। अगर हमारी छोटे दाने वाली फसल है तो थोड़ा सा उसका जो रिकमेंडेड स्पीड है जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड है उसे चलाना है। अगर हमारी बड़ी दाने वाली फसल है तो उसको हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाना चाहिए। एक तो ये तो हुआ बात के कितने गति से उसे चले, दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण होता है कि कितने स्पीड में उसमें एक थ्रेशिंग ड्रम लगा होता है जो बहुत जरूरी पार्ट है या सिस्टम है जिससे हमारी थ्रेशिंग होती है, तो वो 500 से 600 आरपीएम पे इसे घुमाना चाहिए। तीसरी जो जरूरी बात होती है कि जब कटर बार है, सामने जो कटिंग करने वाला पार्ट लगा हुआ है जिसमें रील भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जब हम खेत में कंबाइन हार्वेस्टर को डालते हैं, ये कम से कम हाइट से उसे काटना चाहिए। इसके क्या है कि दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी जो पूरी फसल है या कभी गिरी हुई फसल भी होती है वो आसानी से मशीन के अंदर में आ जाए और आपकी बिल्कुल सही तरीके से जितना आपने फसल ली है वो है। दूसरा, जिससे पराली जो है वो खेत में नहीं बच जाती। अगर हम ऊपर से काटते हैं तो बहुत बार कुछ ऑपरेटर्स ऊपर काटने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा पराली वहां छोड़ देते हैं तो पराली की एक समस्या उभर के आ जाती है। तो हमें अगर हम कम से कम हाइट में काटे तो वो पूरा पराली जो है हमारे धान के साथ में अंदर में जाएगी, थ्रेश होगी, पराली कट के पीछे की तरफ चली जाएगी और हमारा धान हम एक थ्रेश करके इकट्ठा कर सकते
1: हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा अधिक धान भी हमें मिलेगा क्योंकि वो जमीनी स्तर से काटा जाएगा,
2: क्योंकि बहुत बार फसल गिरी हुई भी होती है तो उसको आज के इस कंबाइन बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं जो गिरी हुई फसल को उठा भी लेते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना था गति भी सही तरीके से होनी चाहिए, ऑपरेटर भी सही होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे हमारे किसान भाई हैं वो खुद मशीन चलाते हैं कई बार, या कई बार हायर करते हैं, तो मशीन चलाने के लिए भी जहाँ से हायर किया है वहाँ से ही एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो होता है उसे चलाने के लिए आता है, तो इस दौरान कौन कौन सी सावधानियां

0: लगे, पुलिस लगे, एक बहुत सावधानियों के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले होता है कि ये जो पार्ट्स है, जो रोटेटिंग पार्ट्स है, जो घूमने वाले पार्ट्स है, इनको कवर होना चाहिए
1: जी
0: और मशीन से दूर होना चाहिए। आदमी ढीले कपड़े ना पहने से इससे बचा जा सकता है। तो ये तो एक मशीन से इस्तेमाल करने से पहले इन सब बातों का हमें ध्यान रखना
1: यानी कि सिर्फ मशीन का चुनाव करना ही जरूरी नहीं है, उसका सावधानी से इस्तेमाल
0: इस्तेमाल
1: करना
0: करना।
1: और सारे सुरक्षा उपकरण जो है उनका सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी
0: बिल्कुल,
1: है।
0: इससे क्या होगा कि मशीन हमारी बिल्कुल सही तरीके से चलेगी और कोई ब्रेकेज नहीं आएगा। अदरवाइज आप निरीक्षण करके नहीं रखेंगे तो फिर जैसे ब्रेक डाउन आएगा तो रिपेयर करने में टाइम लगेगा, और जिसकी वजह से बहुत बार कुछ ऐसे पार्ट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तो समय जाता है और फसल को नुकसान होने के चांसेस बढ़ते।
1: डॉक्टर साहब, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो चाहते हैं कि हमारे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो, उनकी आय जो है वो दोगुनी हो जाए। तो अगर मशीनीकरण के क्षेत्र में बात करें तो सरकार की ओर से किस किस तरह की सहायता जो है वो किसानों को दी जाती है?
0: देखिए, जैसे शुरुआत में हमने कहा कि मशीनीकरण बहुत ही जरूरी है और इसको बढ़ावा देने के लिए हमारी जो भारत सरकार है उनकी तरफ से काफी बड़ी मात्रा को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें जो भी मशीन है, कृषि यंत्र है, वो कटाई के लिए मशीन हो या जैसे कंबाइन हार्वेस्टर है या कुछ अन्य मशीन है, जैसे हम पराली प्रबंधन में मशीनें करें उसमें, जैसे कुछ किसानों के लिए जो मशागत करने, जैसे टीलेज वाली मशीन है, रोटावेटर्स हुआ, एमबी प्लाउ हुआ, कुछ मल्चर्स है, इन सब चीजों में भारत सरकार ने सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत काफी अच्छी मात्रा में मशीनों की जो पूरी लागत होती है उसमें 40 से 50% तक सब्सिडी का प्रावधान किया है। अगर हम उसे कस्टम हायरिंग की तरफ जाते हैं,
1: जी
0: अगर हमें कोई फार्म मशीनरी बैंक बनानी है तो उसमें भी भारत सरकार बहुत अच्छी तरीके से सहायता प्रदान करती है और लगभग 80% तक हमें उसमें सहायता भी मिलती है। और हमारे उधर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उधर अगर हम कोई हमारे किसान भाई है तो लगभग 95% तक भी भारत सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जाती है, जिससे हम मशीनरी बैंक जो जरूरत वाली मशीन से उनको हमारे खेतों के आसपास रख सकते हैं। कोई एक किसान को खरीदने की जरूरत
1: जी
0: नहीं है, किसान भाई अपना समूह बना के उसे खरीद सकते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करके उसका फायदा उठा सकते हैं और मशीनीकरण करके अपनी फसल को आगे बढ़ा सकते।
1: और जैसे धान की कटाई के बाद, उसकी थ्रेसिंग के बाद जो बहुत सारे अवशेष हैं वो खेत में ही रह जाते हैं डॉक्टर साहब, हम ये देखते
0: बिल्कुल
1: हैं कई बार,
0: बिल्कुल
1: और किसान जो है उन अवशेषों को जला दिया करते हैं जो कि हमारी पराली है, जिसके जलाने से बहुत सारे अलग अलग तरह के नुकसान हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस पराली का किस किस तरीके से इस्तेमाल किसान कर सकते हैं या उससे किस तरीके से अपनी आय बढ़ा सकते हैं?
0: ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है जब पराली का सही प्रबंधन करना। जो मैंने कंबाइन हार्वेस्टर की बात की, आजकल सभी कंबाइन हार्वेस्टर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो कंबाइन के पीछे लगी होती है, जिससे जो पराली थ्रेशिंग के बाद बाहर आती है उसको छोटे छोटे भागों में कट किया जाता है और जब पीछे की तरफ उसे डाला जाता है और स्प्रेड किया जाता है तो बहुत फैला के उसे स्प्रेड किया जाता है। तो ये ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य भी है और किसान भाई को इसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये सिस्टम हमारे कंबाइन में लगा हुआ है, तो जिससे हमारा पहले तो उसी जगह पे पराली का प्रबंधन हो जाएगा। उसके बाद जब पराली आपके खेत में है और कंबाइन में धान को निकाल लिया है, अब इस पराली के प्रबंधन के लिए भी विभिन्न स्कीम्स, विभिन्न तरीके हैं, लेकिन हम अगर विकल्पों की बात करें तो सब कुछ मशीनें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ट्रॉक कलेक्ट करने के लिए या चॉप करने के लिए कलेक्टर कम चॉपर्स आते हैं, जिसका इस्तेमाल करके उस पराली को हम छोटे छोटे भागों में कर सकते हैं। दूसरा, उसके ब्लॉक्स बना सकते हैं या बेल्स बना सकते हैं, उसमें आपके स्क्वायर बेल्स वाली भी मशीनें आती है, राउंड बेल्स वाली भी मशीनें आती है, जिसका इस्तेमाल आप किसी अन्य विकल्पों के लिए भी किया जा सकता है, या ऐसे अन्य भी तरीके, जैसे हमारे संस्थान में अगर आप आएंगे तो पराली से भी हम पशुओं के लिए चारे के ब्लॉक बनाते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास मशीन है। और आपने जो हमारी प्रचलित तकनीकी है पूसा डिकम्पोजर, अगर हमें खेत में ही उस पराली से फायदा उठाना है तो पूसा डिकम्पोजर का छिड़काव करें तुरंत ही कटाई के बाद, और सही तरीके से नमी अगर है तो उसको किसी भी टिलेज मशीन से, रोटावेटर या और भी मशीनों से मिट्टी में मिला दिया जाए स्प्रे करने के बाद, और आप आसान तरीके से आपकी बुआई के लिए खेत आपका तैयार हो जाएगा और जो रबी फसल है उसमें आप उसका इस्तेमाल कर।
1: यानी कि पराली का प्रबंधन करने से जो खेतों में से जो सोना निकला है धान के रूप में, उसके बाद हम अपने खेत को भी सोना दे सकते हैं, क्योंकि अगर
0: बिल्कुल
1: हम उस पराली को अपने खेतों में मिला देते हैं या अपने पशुओं के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

0: तो डॉक्टर साहब, हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन हैं जो कि इस समय मशीन से धान की कटाई कर रहे हैं, तो उन्हें अंतिम सलाह आप क्या देना चाहेंगे कि कटाई से पहले उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना है, कटाई के दौरान और कटाई के बाद?
1: सबसे पहले तो क्योंकि मशीन जब खेत में आती है तो ऐसा ना हो कि जमीन हमारी गीली हो, तो लगभग 2 हफ्ते पहले जो है पानी का निकास कर देना चाहिए। जिसके बाद कोई भी मशीन, आप जैसे हार्वेस्टर भी है, बहुत बड़ी मशीन है, वजनदार मशीन है, अगर कीचड़ में आएगी तो दिक्कत होती है। हालांकि कुछ नई मशीनें आई है, ट्रैक टाइप के कंबाइंस भी आजकल मार्केट में आए हैं जो आसानी से चल सकते हैं, लेकिन एक तो यही बात है कि नमी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए खेत में। आप बड़े आसानी से इन मशीनों का इस्तेमाल करके आपके फसल से फायदा हो।
0: तो श्रोताओं, आज की बातचीत से ये समझ में आता है कि धान की कटाई और थ्रेसिंग में मशीनीकरण किसान का समय, श्रम और लागत बचाने के साथ साथ फसल के नुकसान को भी कम कर सकता है, बशर्ते मशीन का चुनाव और उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: अभी आप सुन रहे थे धान की फसलों की कटाई और थ्रेसिंग में मशीनीकरण का उपयोग, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सतीश देवराम लांडे, और आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग पूसा नई दिल्ली में।
0: और चलिए गौतम, अब अपने श्रोताओं का करवाते हैं मनोरंजन और उनको सुनवाते हैं ये एक लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों ये प्यारा सा लोकगीत।
1: और गौतम, अब अगर हम बात करें कि मौसम कैसा रहने वाला है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में।
0: मौसम किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है और अगर उनको पहले से मौसम की जानकारी हो कि मौसम कैसा रहने वाला है तो वो तैयार रहते हैं अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए। तो दिल्ली और NCR में मुख्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और बारिश की कोई खास उम्मीद नहीं है। तापमान की बात करें अगर तो अधिकतम तापमान जो है 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
1: और गौतम, अब अपने किसान भाई बहनों को दे देते हैं जानकारी कि वो इस समय मौसम के अनुसार अपने खेतों में कौन कौन से काम कर सकते हैं। अगर किसान भाई बहनों आप अगेती मटर की बुआई करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है, इसके लिए आप पूसा प्रगति जैसी उन्नत किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: वहीं अगर गाजर की बुआई की बात करें कोमल, तो गाजर की जो बुआई है वो मेड़ों पर करनी चाहिए और पूसा रुधिरा अच्छी किस्म है। सामान्य तरीके से बुआई में करीब 4 किलो बीज प्रति एकड़ की जरूरत होती है। बीज को बुआई से पहले टाउन से उपचारित करें और खेत में गोबर की सड़ी खाद के साथ साथ फास्फोरस और पोटास खाद का इस्तेमाल जरूर करें।
1: इस मौसम में सब्जियों में दीमक का प्रकोप दिखाई दे सकता है किसान भाइयों, तो इसलिए खेतों की नियमित निगरानी करते रहें। अगर कोई प्रकोप दिखाई देता है तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही उचित कीटनाशी का प्रयोग करें। इसी तरह सफेद मक्खी और दूसरे चूसक कीटों पर भी नजर रखें। प्रकोप दिखाई देने पर अनुशंसित दवा का उचित मात्रा में छिड़काव करें।
0: वहीं अगर कोमल सब्जियों की बात करें, मिर्च और बैंगन में फल छेदक तथा शीर्ष छेदक और फूल गोभी पत्ता गोभी में डायमंड बैक मोथ की निगरानी करें। इनके लिए फेरोमोन ट्रैप 4 से 6 प्रति एकड़ लगाए जा सकते हैं। प्रकोप अगर अधिक हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही छिड़काव करें।
1: तो ये तो जानकारी थी कि हमारे किसान भाई बहन किस तरह से अपने खेतों में समसामयिक कार्य कर सकते हैं। और गौतम, अब समय है कार्यक्रम में कि हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आजादपुर मंडी के बाजार भाव किस तरीके से रहे फल और सब्जियों के। सबसे पहले सब्जियों की बात करें तो आलू का दाम रहा 13 रुपए प्रति किलो, प्याज 35 रुपए प्रति किलो, टमाटर 24 रुपए प्रति किलो, बैंगन 20 रुपए प्रति किलो, पत्ता गोभी 12 रुपए प्रति किलो। और अगर फलों की बात करें तो सेब का दाम रहा 83 रुपए प्रति किलो, केला 20 रुपए प्रति किलो, अमरूद 67 रुपए प्रति किलो और पपीते का भाव रहा 43 रुपए प्रति किलो।
0: किसान भाइयों बहनों, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: तो इसी के साथ हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम के संयोजक शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर के साथ आप सभी को खुशहाल खेती की शुभकामनाओं के साथ हम दोनों का नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, अब गोले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: This is Akash Pani Thura. Welcome once again to the studio of Akash Pani. It's now 8:10 PM.
1: साथ मैं मुकेश कुमार. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है. नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद में मुकदमा चलाने की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की गई है. जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है.
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है. परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है. इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है.
2: From 25,000 to 10,000.
1: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है. अब 10,000 रुपए की मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे और 10,000 रुपए से कम की लंबित नोटिस को वापस लिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है. श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी.
4: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है. कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए. अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके. यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है. श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा. उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है. श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही. ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवम्बर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा. 42 पूर्व न्यायाधीशों ने भारत की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने लिखा कि इस सबके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और यहां तक कि उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है. पत्र में चिंता व्यक्त की गई कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं. राजघाट पर जारी विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने कुछ प्रमुख मार्गों पर बसों और भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. ये प्रतिबंध आज रात 10 बजे लागू रहेगा. यातायात पुलिस के अनुसार इन वाहनों को एनएस मार्ग और लाल किले की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा दिल्ली गेट की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी. भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं. सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया. तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मनिपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए. इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
5: This is Akashwani, the news read by Renuka. The GST Council has removed power of arrest of tax officers and has raised the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. The decision was taken during the 57th meeting of the council in New Delhi today. The punishment, whether fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake, or falls behind on payment will face recovery, interest, and a proportionate penalty. Addressing media following the meeting this evening, Finance Minister Nirmala Sitharaman said no rate changes has been made in GST Council meeting and the rate structure is settled.
2: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
5: Prime Minister Narendra Modi has said, India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said, the India Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Emphasizing the critical importance of telecom and digital technology, Mr. Modi stressed that phone and network security must remain a priority. He also highlighted the growing challenges of deepfakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.
4: डीपफेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है ये भी हम देख रहे हैं इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें सरकारें टेक्नोलॉजी कंपनी टेलीकॉम ऑपरेटर्स सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूँ एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाए जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके
5: 42 former judges have written an open letter to the people of India expressing concern over attempts to undermine the Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. In the letter, they have expressed concern that India's constitutional bodies are under sustained attack. They wrote that the Election Commission stands at the center of this and even the higher judiciary and statutory agencies have not been spared. They allege that this is a campaign driven by vested political interests with little regard for potentially devastating consequences of destabilizing the world's largest democracy. The letter highlighted that the special intensive revision of electoral rules is valid under Section 21(3) of the Representation of the People Act 1950. They pointed out that the last SIR was completed about 2 decades back and no one called those revisions a conspiracy. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw has said a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence will be floated within the next month. Speaking to media after releasing the World Development Report 2026, the promise of artificial intelligence today, Mr. Vaishnaw said that the proposed consultation paper will focus on AI safety, cyber security, benefits and potential harms. The Central Bureau of Investigation, CBI, has busted an impersonation and cheating network operating across Delhi, Bihar, Haryana and West Bengal, allegedly involved in a banking recruitment racket. It also arrested 4 key operatives, including a CGST inspector in the case. An FIR was filed in the matter on the complaint of Institute of Banking Personnel Selection. The 2026 Nobel Prize in Literature has been awarded to Canadian poet and essayist Anne Carson. Making the announcement, the Swedish Academy in Stockholm said the author has been honored for her bold and inventive ode that in playful dialogue with the classical tradition, which created new forms for contemporary literature. In badminton, 2-time Olympic medalist PV Sindhu saw off Japan's Riko Gunjito advance to the quarterfinals of women's singles, but it was

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जापान में होने वाले एशियाई पैरा खेलों से पहले भारतीय दल को आज औपचारिक विदाई दी गई। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय दल की नई जर्सी का अनावरण किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल रांची में खेला जाएगा और प्रसार भारती तथा इन डॉट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसान क्रिकेट लीग आयोजित करने की घोषणा की।

0: तो कार्यक्रम को आज शुरू किया जाए बैडमिंटन की खबर के साथ, जहां दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की रिको गुंजी को हराया। हालांकि तन्वी शर्मा को महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली को पुरुष सिंगल्स के अपने मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स जोड़ी कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय का मुकाबला अब से कुछ देर में इंग्लैंड की ओलिवर बटलर और सैमुअल जोन्स से होगा।
1: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने दूसरे राउंड ऑफ 16 मुकाबले में जापान के रिको गुंजी को 21-15, 21-15 से हराया। मैच की शुरुआत से ही सिंधु ने दबाव बनाए रखा और दोनों ही सेट में गुंजी को वापसी का मौका ना देते हुए जीत दर्ज की। अब सिंधु का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त और पूर्व विश्व चैंपियन थाईलैंड की रचनोक इंथानोन से होगा। सिंधु ने हाल ही में जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट जीता था। थारुण मन्नेपल्ली और तन्वी शर्मा के लिए ये निराशजनक रहा, जिन्हें सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव ने मन्नेपल्ली को 21-14, 21-19 से हराया, जबकि रथ चानोक ने तन्वी को एक तरफा मुकाबलों में 21-18, 21-7 से मात दी। पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत भी कनाडा के ब्रायन यांग से 21-15, 15-21, 13-21 से हार कर पहले ही दौर में टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इससे पहले HS प्रणॉय, उन्नति हुड्डा, अश्मिता चालिया और मल्लविका भंसौर भी शुरुआती दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए। HS प्रणॉय को डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं उन्नति चीन की हान कियान शी से हार गई, जबकि अश्मिता डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से कड़े 3 गेम के मुकाबले में हार गई। मालविका स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर से सीधे गेम में हार गई। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो पीवी सिंधु ने अपने आगे की राह पक्की कर ली है और अब से कुछ देर बाद कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की पुरुष डबल्स जोड़ी भी अपना मुकाबला खेलेगी, जिनके सामने इंग्लैंड की ओलिवर बटलर और सैमुअल जोन्स होंगे। तो देखना होगा कि क्या भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय कर पाती है या नहीं। और अब कार्यक्रम में बात जापान की आइची नगोया में होने वाले एशियाई पैरा खेलों की। इन खेलों से पहले आज भारतीय दल को औपचारिक विदाई दी गई। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय पैरालंपिक समिति द्वारा आयोजित इस समारोह में भारतीय दल की नई जर्सी का अनावरण किया। श्री मांडविया ने चुनौतियों को पार करने वाले पैरा खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों ने जीवन की यात्रा पहले ही जीत ली है और अब इन्हें पदक की यात्रा जीतनी है।
2: हमारे पैरा एथलीट जापान में एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। हमने उसका हौसला भी बढ़ाया, उसको प्रोत्साहित भी करा। और पैरा एथलीट वे युवा है जो अपने जीवन को तो जीत गया है। एक छोटी बात नहीं है अपना परिवार का विश्वास जीतना, सभी चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना, स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करना, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए जाना। जीवन की यात्रा को तो आप जीते हैं, लेकिन आपको मेडल की यात्रा को भी फतेह करना है। मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा।

0: समारोह में खेल मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी तमाम नीतियों द्वारा खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: लास्ट एशियन गेम्स में हम 111 तक पहुंचे, हमें और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जज्बा चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हमारे देश के एथलीट को, चाहे वो पैरा एथलीट हो, चाहे वो एथलीट हो, उसको संसाधन की कोई कमी नहीं है। सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, ओलंपिक्स एसोसिएशन की ओर से जो भी सहयोग की आवश्यकता हो उसको सहयोग उपलब्ध हो रहा है। आर्थिक रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, खेलो इंडिया एथलीट के रूप में, टॉप्स के एथलीट के रूप में सरकार आपके साथ खड़ी रहती है।
0: श्री मांडविया ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है और देश के युवा इसे विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी जब पोडियम पर खड़े होते हैं तो पूरे देश को खुशी होती है।
1: दुनिया का सबसे युवा देश आज हमारा भारत है। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को मेडल में कन्वर्ट करना, इनोवेशन में कन्वर्ट करना, सफलता में कन्वर्ट करना, सशक्तिकरण में कन्वर्ट करना, ये मोदी सरकार का मंत्र है। और होलिस्टिक अप्रोच के साथ मोदी जी आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़े, पहलू को टच करते हुए आज हमारा भारत बदल रहा है, नया भारत बन रहा है, विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे एथलीट जब पोडियम पर खड़े होते हैं, पोडियम को फिनिश करते हैं, दोस्तों सफलता हमारे नजदीक आती जा रही है।
0: तो भारतीय दल अब तैयार है इस चुनौती को पार करने के लिए। इस अवसर पर भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया, चेयरपर्सन पायल कनोडिया और मुख्य कोच सत्य नारायण समेत कई बड़े खिलाड़ी मौजूद रहे। और भारतीय टीम के इस अभियान पर और अधिक जानकारी लेकर के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी विशेष भारत का जो ये अभियान है। पहले एशियन गेम्स समाप्त हो चुके हैं और अब बारी पैरा खिलाड़ियों की है कि वो किस तरह पोडियम पे कितना अधिक मौकों पर भारतीय तिरंगे को गुंजायमान करते हैं। तो कह सकते हैं कि भारत को अपने किन किन खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी और किस तरह की अभियान की उम्मीद है।
2: शक्ति, भारत का 121 सदस्यीय दल रवाना हो चुका है। 80 पुरुष खिलाड़ी और 41 महिला खिलाड़ी इस टीम में शामिल है। एथलेटिक्स पे सबसे ज्यादा 44 खिलाड़ी है। अगर बात करें किन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर, तो प्रमोद भगत और भाविना पटेल जो फ्लैग बेरर हैं इंडिया के, तो उन पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी क्योंकि प्रमोद भगत एक बार पैरालंपिक्स में भी गोल्ड जीत चुके हैं और 4 गोल्ड और 2 एशियन गेम्स मेडल भी उनके नाम पे हैं। अगर सुमित अंतिल की बात करें तो 2 बार गोल्ड उन्होंने भी जीता है पैरालंपिक्स में। और अवनी लेखरा जो पहली भारतीय महिला बनी थी 2 गोल्ड जीतने वाली, तो उन पर भी काफी निगाहें होंगी। साथ ही साथ शीतल देवी का भी प्रदर्शन जो है देखने लायक होगा कि किस तरीके से वो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी।
0: जी बिल्कुल, आपने काफी बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों के नाम गिनाए जिनसे भारत को बिल्कुल उम्मीद होगी। और 18 अक्टूबर से ये आयोजन शुरू होगा, 24 तारीख तक चलेगा। जब 2024 के ओलंपिक्स खत्म हुए उसके बाद जब पैरालंपिक्स की बारी आई तो भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने वहां पे नए कीर्तिमान बनाए और एक लगातार हमने क्रम देखा है जहां पे खेलों के आयोजन के बाद जब पैरा खेलों की बारी आती है तो भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं, नए कीर्तिमान बनाते हैं, हमने पैरालंपिक्स में देखा है। और अब इस बार कितनी उम्मीद होगी क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने एक तरफ 85 पदक जीत के अपना काम किया है, अब बारी पैरा खिलाड़ियों की है जो 100 के आंकड़े की उम्मीद थी, क्या इस बार पार होती हुई नजर आएगी।
2: बिल्कुल शक्ति, भारतीय खिलाड़ियों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आपने जिक्र किया पैरा ओलंपिक्स का, तो मैं कहना चाहूंगा कि एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स 2023 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था जहां भारतीय एशियन गेम्स में 106 मेडल जीते थे और पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल अपने नाम किए थे। तो पैरा एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा था, वहीं पैरालंपिक्स की भी आपने बात करी तो वो भी प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। इस बार 121 खिलाड़ी जो है पैरा एशियन गेम्स में जा रहे हैं, तो देखना ही दिलचस्प होगा कि 100 मेडल का आंकड़ा जो एशियन गेम्स में पूरा नहीं हो पाया तो क्या पैरा एशियन गेम्स में हो पाएगा, सभी को यही उम्मीद है।
0: जी बिल्कुल, लेकिन हम अभी जब श्री मनसुख मांडविया जी को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछले बार हमने 111 पदक जीते थे, लेकिन इस बार क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी क्योंकि दल की संख्या में अगर देखी जाए तो पिछले बार भारत ने एक बेहद बड़ा दल भेजा था लेकिन इस बार उसकी तुलना में थोड़ी सी कटौती खिलाड़ियों में हुई है।
2: बिल्कुल शक्ति, पिछली बार भारत का जो दल था पैरा एशियन गेम्स में वो 303 सदस्यों का था जहां भारत ने 111 मेडल अपने नाम किए थे जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस बार वो दल सिर्फ 121 सदस्यों का है जिसमें 80 पुरुष 41 महिलाएं खेलेंगी। और एथलेटिक्स से भारत को सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी क्योंकि एशियन गेम्स में भी हम लोगों ने सबसे ज्यादा मेडल्स जो है एथलेटिक्स में ही जीते, तो 44 खिलाड़ी भारत का

0: करते नजर आएंगे पैरा एशियन गेम्स पे, और बहुत सारी उम्मीदों को लेकर भारत का जो है परचम लहराने का प्रयास करेंगे।
1: जी बिल्कुल, खिलाड़ियों से उम्मीद होगी कि इस तरह की एथलीट्स ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भारत के लिए एक पदकों की झड़ी लगाते हुए नजर आएंगे, जैसा हमने पिछले कई बड़े आयोजनों से, जिसमें पुराने पैरा एशियन गेम्स हो, पुराने पैरालंपिक्स हो, देखा है। इस बार भी भारतीय दल तैयार है जापान की इस चुनौती को एक बड़े कीर्तिमान के साथ समाप्त करने के लिए। और अब कार्यक्रम में बात क्रिकेट के मैदान की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल खेला जाएगा। ये मैच रांची के JSC अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। विशेष, भारत ने पहले मैच में एक शानदार जीत दर्ज की थी 8 विकेट से, और अब श्रृंखला के पहले मैच को जीत करके बढ़त जो है 1-0 की है। कल भारत के लिए कैसी स्थितियां होंगी रांची में और किन खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है?
0: शक्ति, भारतीय बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमें देखने को मिला कि बल्लेबाजी के दम पर एक तरफा मुकाबला भारत ने अपने नाम कर लिया। लेकिन गेंदबाजी की भी तारीफ होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब भारतीय गेंदबाजों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया तो 44 रन पर 3 विकेट झटक लिए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने वापसी करते हुए स्कोर को 171 तक पहुंचा दिया। उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करी। हालांकि जब से श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी की कमान संभाली है तब से बल्लेबाजी के परफॉर्मेंस में उनका थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस पारी से उन्होंने बताया है अपने आलोचकों को कि उनकी क्या क्वालिटी है।
1: जी बिल्कुल, एक क्वालिटी खिलाड़ी है इसमें कोई संदेह नहीं, जो क्लास और आक्रामकता का एक अनूठा समागम देखने को मिलता है उनकी बल्लेबाजी में। कल ऐसी भी उम्मीदें होंगी कि वैभव सूर्यवंशी भी भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। वैभव या फिर लोकल बॉय ईशान किशन, क्या उम्मीदें होंगी इन दो खिलाड़ियों से खासकर?
0: शक्ति, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और ईशान किशन की फॉर्म की अगर बात करें तो पिछले 1-2 सालों से उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता है, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से लेकर उसके बाद IPL में उनका परफॉर्मेंस, T20 विश्व कप जिताना भारत को और अहम मौकों पर परफॉर्म करना, ये ईशान किशन की पहचान बन चुकी है। वहीं युवा वैभव सूर्यवंशी ने भी Under-19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था भारत के लिए, और अब वो अपने मौके तलाश रहे हैं टीम में। क्या टीम कुछ अलग कॉम्बिनेशन करते हुए वैभव सूर्यवंशी को मौका दे सकती है? यदि देती है तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी प्रेशर में परफॉर्म करते हैं।
1: जी बिल्कुल, देखना होगा कि किस तरह से अपने आप को एक मैच्योर खिलाड़ी की तरह स्थापित करने का काम करते हैं इस समय। एक और अपडेट आया क्रिकेट के मैदान से, जहां श्रीलंका के टेस्ट कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने आज टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कुसल मेंडिस को उनकी जगह पे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। प्रसार भारती और इन डॉट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज किसान क्रिकेट लीग KCL के आयोजन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों से क्रिकेट खिलाड़ियों और गायकों की खोज करना है। लीग के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लीग का आयोजन अगले वर्ष फरवरी में होगा और इसमें भाग लेने के लिए पंजीकरण अगले 2 से 3 सप्ताह में शुरू हो जाएगा।
2: Kisan Cricket League is a nationwide cricket league focused on only the rural people or youngsters who have cricket as their career choice. So we will be doing a nationwide talent hunt in which we will be inviting more than 1 lakh players who will be then analyzed by our coaches. They will be brought to the physical trials and then 140 players will be chosen out of. Each player will be provided initial package of 5 lakh rupees for the league.
1: तो एक और मंच क्रिकेट का तैयार होता हुआ, खासकर इस बार फोकस है ग्रामीण क्षेत्रों पर, रूरल एरिया पर। 15 ओवर का फॉर्मेट होगा, व्हाइट बॉल क्रिकेट होगी, जहां पहले सत्र में 45 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें देशभर से 7 टीमें, 140 खिलाड़ी और 30 गायक शामिल होंगे। श्री पांडे ने कहा कि यह पहल दर्शकों को मुफ्त और पारिवारिक मनोरंजन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
2: I think it is one of the progressive steps in the right direction because being a public service broadcaster, Prasar Bharati caters people. One, it comes free of cost, so you don't have to take any subscription to watch live matches. That is a very big thing.
1: तो ये अनूठा संगम जहां मनोरंजन और क्रिकेट एक साथ देखने को मिलेगा। और अब चलते चलते रुक कर लेते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी का आयोजन जलंधर और मोहाली में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को 6 टीमों के टूर्नामेंट में स्थान दिया गया है। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा जापान, चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और अब बांग्लादेश की टीम भाग लेगी। पंजाब में लगभग 2 दशक बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की वापसी होने जा रही है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स

0: की गई कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम की नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेट थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशो भूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: अगर टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए ही ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाए जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
4: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई।

0: और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीपफेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
1: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को एआई का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है एआई का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: करें इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा न दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
4: अब पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
5: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों की महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
6: सेंसेक्स 1,045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़क कर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 पर बंद हुआ।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
7: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं। इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
1: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुर्गन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says, growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential. Calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in the national capital this evening.
9: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores and reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000.
8: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings.
9: GST council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
8: Ms. Sitharaman said the council has also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today.
10: अगर टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
8: Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.
10: ये भी हम देख रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
8: Prime Minister Modi said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said the Digital India campaign has been the core of the country's digital transformation, with the mobile phone placed at the center of the initiative to bridge the digital divide and make technology more accessible to all. Mr. Modi said that 5G connectivity has now reached every district of the country. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has said that the government plans to release a consultation paper on the future regulations of artificial intelligence, AI, within the next month, with a key focus on ensuring AI safety and addressing the growing threat posed by deepfakes. The minister was speaking to media after releasing the World Development Report 2026, titled The Promise of Artificial Intelligence Today.
11: AI का regulation किस तरह से हो?
12: Decision on how AI regulation can be done in the time to come has been made. In the next month, a consultation paper will be floated on AI safety, cyber security, benefits and harms of AI, and benefits of AI to everyone. Protection from harmful things like deepfakes. On the basis of this consultation paper, AI regulation will be formed later. Suggestions from industry regarding AI-based curriculum for students, youth and young people have been received. We have sent it to the Ministry of Education. The Ministry, industry and universities together can upgrade their course curriculum so that students who enter colleges today can benefit from AI.
8: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India recorded exports worth $863 billion last year and aims to achieve $1 trillion in exports this year. The minister said this while addressing the curtain raiser of the 31st CII Partnership Summit in New Delhi today. The summit will be held in Visakhapatnam on the 12th and 13th of next month.
13: In the current year, after a record $863 billion of exports last year, when global growth is slated to come down to under 3%, international trade is expected to be soft we have set a challenge and decided we will look at $1 trillion of exports in the current year. That's almost 16% growth in a year in which international trade is expected to barely grow by 2.5 or 3%. And we are very confident that the current year will give an upward of 7% growth, maintaining the fastest growing large economy.
8: Ports, Shipping and Waterways Minister Sarbananda Sonowal today said the Cochin Shipyard Limited has received orders to build over 40 ships from the multiple countries including US, Germany and Norway. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Sonowal highlighted that the Indian shipbuilders are earning credibility across the globe in shipbuilding. He said such orders reflect growing confidence of the nations. This is Akashwani giving you the news.
2: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
8: Forty-two former judges have written an open letter to the people of India expressing concern over attempts to undermine the Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. In the letter, they have expressed concern that India's constitutional bodies are under sustained attack. They wrote that the Election Commission stands at the center of this and even the higher judiciary and statutory agencies have not been spared. They allege that this is a campaign driven by vested political interests with little regard for potentially devastating consequences of destabilizing the world's largest democracy. The letter highlighted that the special intensive revision of electoral rules is valid under Section 21(3) of the Representation of the People's Act 1950. They appeal to political parties to contest elections and not delegitimize them. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva, Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through initiatives like the Nari Shakti Vandan Adhiniyam.
14: In 2023, Parliament passed the Constitution 106th Amendment Act Nari Shakti Vandan Adhiniyam, marking a historic milestone in its national journey to foster equitable representation of women in public life at all levels of the federal structure. This landmark legislation reserves one-third of all seats for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. In his Independence Day address this year, Prime Minister Narendra Modi appealed to all political parties to end decades of delay and swiftly implement the one-third legislative reservation for women in Parliament and state assemblies.
4: आज पंचायतों में नगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन करें और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था लेकिन किसी न किसी कारण से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से आग्रह करता हूँ आइए महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए
14: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज राज्यसभा एमपी फ्रॉम बिहार धर्मशीला गुप्ता सेड दैट थ्रू दिस एक्ट द मोदी गवर्नमेंट हैज पेव्ड द वे फॉर हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन टू प्ले अ डिसाइसिव रोल इन पॉलिटिकल एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस
5: नारी शक्ति बंधन अधिनियम
2: द नारी शक्ति बंधन अधिनियम इज अ हिस्टोरिक स्टेप अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय एंश्योरिंग 33% रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज द मोदी गवर्नमेंट हैज पेव्ड द वे फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग
5: निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है
14: The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, once implemented, women representation will rise substantially in the Lok Sabha and state assemblies. It is a decisive step towards empowering India's Nari Shakti with a stronger voice in decision making and a greater role in shaping the nation's future. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
8: India has condemned the attacks over the past few days targeting Abu International Airport and King Khalid International Airport in Saudi Arabia's Riyadh, which have resulted in deaths of 3 civilians and injuring 36 others. In a statement, the Ministry of External Affairs said the targeting of civilian infrastructure is completely unacceptable. The 2026 Nobel Prize in Literature has been awarded to Canadian poet and essayist Anne Carson. The Swedish Academy, which announced the prize in Stockholm, said the author was honored for her bold and inventive work that, through a playful dialogue with the classical tradition, has created new norms for contemporary literature. The Nobel Prize in Literature carries a prize money of around $1.2 million. The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force today. Addressing the gathering at Hindon Air Base in Ghaziabad on the occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh highlighted the Indian Air Force's growing capabilities while stressing that its true strength lies not merely in advanced equipment and technology, but in its air warriors. On this occasion, the President, Vice President and Prime Minister extended greetings to all air warriors, veterans and their families. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. One of India's most acclaimed actors, Patekar was known for his performances across Hindi and Marathi cinema, with a career spanning several decades. His notable Hindi movies include Parinda, Praha, The Final Act, Tiranga, Krantivir, Khamoshi, The Musical, Ab Tak Chappan and Welcome. The President, Vice President and Prime Minister have expressed grief at the demise of the veteran actor. Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points to settle at 22,232. In badminton, two-time Olympic medalist P.V. Sindhu advanced to the quarterfinals of the women's singles at the Arctic Open Super 500 tournament at Vantaa in Finland today. Sindhu defeated Japan's Riku Gunji 21-15 in the second round. The six-seeded Indian will now face top seed and former world champion Ratnachok Itnadon from Thailand. However, the campaign came to an end for all Indian men's singles players. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees. No changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential. Calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within the next month to ensure AI safety and tackle deepfakes. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine election commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. And that's all in the news at 9. Good night.
15: Spotlight.
16: This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on GST reforms, making compliance simpler for businesses and taxpayers. The participants are Dilip Chinoy, economic analyst, and Gora Dhawanlal, anchor.
15: Hello and welcome to our program. The 57th GST Council meeting discussed today a lot of issues. It focused primarily on GST 2.0, the process reforms, compliance cases, and ease of compliance which can be brought in, and enforcement changes. What all was discussed, what was decided, what are some ramifications for GST payers and for people like you and me, where somewhere GST does impact us. Please join me in welcoming our expert in the studio today, economic analyst Dilip Chinoy. Dilip, welcome to the program.
17: Thank you for having me, Gaurav.
15: So just, cutting to the chase and saying, what are some critical highlights that came out, or some decisions, and once the decisions are enumerated, then we'll take them up one by one.
17: Okay. So if you look at this GST Council meeting today, it's actually talked about as GST 2.0. I think the first phase of GST reforms, which happened in the last year's GST Council meeting, really talked about rationalization of rates, etc. This meeting was all about trust-based administration, decriminalization, the acceptance of ITC refunds, and reducing compliance friction. So if you look at really three bullet points that came out today, that all process reform on regarding registration and refunds and notices, etc., have been approved. Second and very important aspect of today's meeting was the removal of arrest powers of the officers for failure to adhere to certain GST rules and regulations and payments, etc. And the third one, which was actually a very important aspect from the industry point of view, that is when if you pay by goods, etc., if that person does not pay GST, how can you get ITC credit? This proposal or this discussion has actually been referred to a committee of GST Council to take this up. Now, look at it in terms of some of the procedural aspects that have happened. And this is really to reduce friction. It's in the vein of the reforms that this government has been doing, and particularly in the taxation framework. A lot of it from the income tax is being reflected in GST. So there's got to be faster automated registration. There are automatic approvals of eligible low-risk applications, simplified registration for small e-commerce sellers. And this was a very sticking point with the e-commerce. Perhaps we can discuss that later. And of course, in refunds, the acknowledgement period has been reduced from 15 days to 10 days. Around 90% of the reforms are being expected to be issued between 3 working days through a risk-based automated kind of processing. And notices, there'll be no notices for 10,000 rupees and below. Pending notice below threshold of 10,000 rupees are going to be withdrawn. And of course, in the enforcement, arrest powers of GST officers has been recommended for removal, and the prosecution threshold has been raised from 1 crore to 5 crore. This is very interesting for, and for e-commerce and the MSMEs also, there's a very specific provision that e-commerce and small business sellers get simplified registration and compliance arrangements, with the warehouse being notified as a place of sale. So overall, a very positive GST Council meeting outcome, and very, very beneficial for small and medium companies and e-commerce people here, and also continuing the process of decriminalization.
15: I think the overall tone and tenor, that being of simplification and alignment with other taxation policies, with other claims being, so what is happening in other departments, which has worked, and I think one of them also being in the income tax department, the faceless settlement. And I think that being another aspect. But before we come to that, you'd said that input claim for somebody who's paid GST without knowing whether the person down the line has paid it or not. Was this a pain point, and why is it so important in your eyes?
17: So there are two competing principles that apply here. The first one is you need to protect the genuine buyer. If the buyer has actually purchased the goods and services, received a valid invoice, he has paid the supplier and paid the GST component, reported the transaction properly and has no knowledge of involvement of fraud, and then the supplier doesn't pay it, right? Then it is harsh to deny ITC merely because the supplier subsequently defaults. And the second thing is the challenge here is that why it's been referred to a committee is that it is to really look at how the GST revenue plays out. Because for the government, automatically allows the buyer to retain ITC even though the supplier has not paid the tax, it creates a potential vulnerability, right? And, you know, there could be a fake supplier, fake invoice.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी के संगीत से बीमारों का इलाज भी होता है।
0: संगीतकार नौशाद।
1: सब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करती। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, मध्यम सांस लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, शाम पाक। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो वो ये लगता है कि अरे हमको तो जरा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजश्री शांताराम यानी राजश्री, जो एक सुंदर अभिनेत्री और नृत्यांगना के रूप में जानी पहचानी जाती है। भारतीय फिल्म जगत में कई अभिनेत्रियों ने अपनी प्रतिभा, कला, अभिनय और सुंदरता से सेल्यूलाइट को चमकदार बनाया है, और इन अभिनेत्रियों में से एक है राजश्री, जिनका जन्म 8 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था। राजश्री की पहली फिल्म थी इनके पिता और निर्देशक वी शांताराम की सुबह का तारा, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नाम था सोबी, जो फिल्म के किरदार मोहन की बहन का रोल था और इसे इन्होंने अदा किया था। मोहन थे फिल्म में प्रदीप कुमार और इस फिल्म की नायिका थी राजश्री की माता जयश्री। आइए राजश्री पर फिल्माया हुआ ये गाना सुनते हैं।

जयश्री वी शांताराम की पत्नी थी जिन्होंने मराठी और हिंदी की फिल्मों में काम किया, जिसमें मराठी की 1941 की फिल्म शेजारी थी। डॉक्टर पोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, परछाइयां, दहेज जैसी फिल्मों में आपने काम किया

इन्हीं फिल्मों से आप पहचानी भी जाती हैं। आपकी दो संतानों में से एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री और सुपुत्र मुंबई के पूर्व शेरिफ किरण शांताराम हैं। राजा राम वानकुंडे शांताराम और संध्या अभिनीत स्त्री 1961 की फिल्म थी, जिसमें राजश्री भी थी। ये फिल्म कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी। इस फिल्म को 34वें अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चयन की प्रक्रिया जो है साकार नहीं हो सकी। किशोर साहू निर्देशित फिल्म 1963 की गृहस्थी में राजश्री ने अभिनय किया। इनके नायक थे मनोज कुमार। ये फिल्म दक्षिण भारत में बनने वाली पारिवारिक ड्रामा प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड को शुरू करने वाली फिल्म

सन 1963 में आई एक बार फिर किशोर साहू के निर्देशन में बनी राजश्री की फिल्म, नायक मनोज कुमार और फिल्म थी घर बसा के देखो। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी में रोमांस और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण था। ये एक विधवा माँ के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो शहर में अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अपने गांव का घर गिरवी रख देती है। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है और बाद में जो परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। राजश्री ने इस फिल्म में शारदा मेहरा का किरदार निभाया था। आधुनिक पत्नी का रोल श्यामा ने किया था।

0: हिसाब दो।
1: सन 1964 में शहनाई, 1964 में ही जी चाहता है और इसी साल आई फिल्म गीत गाया पत्थरों में। इस फिल्म में राष्ट्र ने विद्या नाम की लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म के नायक थे जितेंद्र।

सन 1965 में आई फिल्म दो दिल इसी साल राजश्री को एक अलग पहचान देने वाली फिल्म आई जानवर। राजश्री की इस फिल्म के नायक थे शम्मी।

0: बात 1966 की है। फिल्म आई सगाई। ये एसडी नारंग के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इसमें अभिनय किया था राजश्री और विश्वजीत ने, जिसमें राजश्री ने शील नाम का एक किरदार निभाया था। ये कहानी एक स्त्री की है जिसका पति बीमार है और उस स्त्री को चाहने वाला एक शख्स है। ये एक औरत के जीवन की राह और कष्ट, मानसिक यंत्रणा की कहानी है। इस फिल्म में अन्य पुरुष की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई।
1: खफा न होना अगर मैं पूछूं कहां से पाया ये हुस्न।

0: अब तुमने खफा ना होना अगर मैं पूछूं।
1: मोहब्बत जिंदगी है, इस फिल्म में राष्ट्रीय के साथ थे धर्मेंद्र, महमूद, चांद उस्मानी, देवेन वर्मा, नाजिर हुसैन जैसे कलाकारों को ली हुई इस फिल्म में राष्ट्रीय ने नीता मेहता का किरदार निभाया था और इस फिल्म में गीत एस एच बिहारी के थे और संगीतकार थे ओपी नैयर।

सवाल फिल्म की तरह दिल में पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा ये तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थिति ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसके 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं। और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।

तो 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में

अब राशिद मुस्लिम का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता

जवान भारत की पहली 70mm फॉर्मेट में बनी फिल्म थी। ये फिल्म एक युवा करोड़पति की यात्रा की कहानी है जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेट चैपमैन से मिलती है। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती हैं, एक सुहाग रात, ब्रह्मचारी और 1973 में

0: चारों फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और वो फिल्म फॉर अवार्ड्स में भी इसमें धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राजसिंह, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनीत थे। इस फिल्म के निर्माता थे जी पी सिप्पी।
1: मेरी मोहब्बत को शुक्रा दे चाहे, मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को शुक्रा दे चाहे, मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म मैना राजश्री की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई है।

0: की राशि के सिनेमा के सफर और उनके अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जीशान का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: Instagram पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, और क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया? विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to rupees

0: 10,000।
1: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब पर करदाता को वसूली ब्याज और अनुपातित जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बेहद आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने के उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्लसन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें ये सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरुगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। पीवी सिंधु आर्केटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in the national capital this evening.
4: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores and reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000.
3: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind in payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The Finance Ministry said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today.
2: टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
3: Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw has said that the government plans to release a consultation paper on the future regulations of artificial intelligence within the next month, with a key focus on ensuring AI safety and addressing the growing threat posed by deep fakes. The minister was speaking to the media after releasing the World Development Report 2026, titled The Promise of Artificial Intelligence Today. 42 former judges have written an open letter to the people of India expressing concern over attempts to undermine the Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. In the letter, they have expressed concern that India's constitutional bodies are under sustained attack. They wrote that the Election Commission stands at the center of this and even the higher judiciary and statutory agencies have not been spared. They allege that this is a campaign driven by vested political interests with little regard for potentially devastating consequences of destabilizing the world's largest democracy. The 2026 Nobel Prize in Literature has been awarded to Canadian poet and essayist Anne Carson. The Swedish Academy, which announced the prize in Stockholm, said the author was honored for her bold and inventive body of work through a playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature. President Draupadi Murmu today attended the 94th anniversary celebrations of the Indian Air Force in New Delhi. On the occasion, the president interacted with air warriors, veterans and their family members. She also released a commemorative postage stamp marking the culmination of MiG-21 operations in the Indian Air Force. Central Armed Police Forces General Administration Act 2026 came into force today. The Union Home Ministry issued a notification designating 8th October as the commencement date for the legislation's provisions. President Draupadi Murmu had given her assent to the act on the 9th of April this year. In badminton, two-time Olympic medalist P.V. Sindhu advanced to the quarterfinals of the women's singles at the Arctic Open Super 500 tournament at Vantaa in Finland today. Sindhu defeated Japan's Reiko Gunji 21-15 in the second round. The six-seeded Indian will now face top seed and former world champion Ratchanok Inthanon from Thailand. However, the campaign came to an end for all Indian men's singles players. And that is the end of this news bulletin.

जाते हैं दिल की धड़कनों पे, एतवार आता नहीं, क्यों बेताबियों को करार आता नहीं। ये कौन खामोशी में सदाएं दे रहा है, कोई रह रहे के पुकारता हो जैसे। वक्त थम सा जाता है, सांसें रुक जाती हैं, धड़कनों में एक अजीब सी रवानी है। अब तो खुद से ही पूछते हैं कि कहीं

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। राज दिल कभी कभी अफसानों में बयान नहीं होता, आईना भी ऐसी पाक मोहब्बत का एहतराम करती है। यादें मोहब्बत की होती है बड़ी शादाब, गुलिस्तान की तरह अफसानों में भी दोहराई जाती है। दो दिल जब धड़कते हैं एक दूसरे को सदाएं देते हैं मोहब्बत का नाम लेकर, वो नींद की आगोश में होने

I'm going to go to the hospital.

अपना है हर बहाने से, फिर एक बार देखा है हमने वो नाजनी चेहरा, वो बेख्याली का आलम, दिल के जज्बातों को निगाहों से बयां करने का वो पाक अंदाज और अदाओं में वो शोखी। दो घड़ी ठहरो कि दीदार अभी बाकी है, हुस्न इश्क की ये मुलाकात।

बातों बातों में रात ढलने को है, कुछ देर ही हुए उनसे मुलाकात हुई। वक्त जरा और थम जाए, निगाहों को यकीन तो आ जाए, हवाओं में ये एहसास घुलने तो दीजिए, नजरों से नजरों की मुलाकात होने तो दीजिए। क्या सातों के तूफान दिल में अभी बाकी है, तो आज की रात यूं हो कि ठहर जाए, भीगे पैरहन की ये संदली खुशबू बिखर जाए, बूंदों की ये मोती बरस जाए, हसरतें दिल की सांसों में सिमट जाए।